फरमाइशी प्रोग्राम लेके हाजिर होवांगी 11:02 ते। प्रोग्राम होएगा पंजाबी तड़का, जिदे विच तुसी साडे नाल जुड़ के पंजाबी गीतां दी फरमाइशां पूरी करा सकदे हो। ठीक 12:02 ते तुसी सुनोगे रोजाना जिंदगी नाल जुड़िया प्रोग्राम होम स्वीट होम। एक बजे तुसी इंजॉय करोगे हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज दे विच। ठीक 2 बजे जिन्हां दोस्तां नूं शायरी दा शौक है उन्हां वास्ते पेश करांगे शायराना अंदाज दे विच प्रोग्राम दिल आज शायर है, जिस विच मैसेजेस राहीं तुसी भी अपनी शायरी शामिल करवा सकते हो।

सरकार ने सोशल मीडिया ते चल रहे उस वीडियो दा खंडन कीता है जिस विच दावा कीता गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आसान आर्थिक लाभ वाले एक निवेश प्लेटफॉर्म दा समर्थन कीता है। पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष सोध SIR 2026 तहत घर घर गणना 25 जून तो 24 जुलाई तक होवेगी।

वैसे ता किसी इंसान दी काबिलियत उसकी मुश्किल दे नाल नहीं उसकी कोशिश दे नाल सानू देखनी चाहिए। किसी नू मंजिल तक पहुंचन लई थोड़ा वध समय लग सकता है, पर उसके सुपनिया दी जिहड़ी उड़ान है उन्नी भी उच्ची हुंदी है जिन्ना उसनू समा लगता है। इस लर्निंग डिसेबिलिटी वीक ते एक अजिहा समाज असी बनाईए कि जिथे हर कोई कह सके मैनू समझिया जाता है ते मैनू स्वीकार किया जाता है। इस साल का 2026 का जो थीम है वह है डू यू सी मी। तो ये जोड़ा दिन है आप सैलीब्रेट तो कर रहे हैं जे सानू इस हफ्ते दे विच या मतलब स्पेशली नहीं है कि ये जोड़ा हफ्ता या स्पेशल जे डेज ने वह जो होंगे ने सैलीब्रेट तो उन्हों का जोड़ा थीम है उदों तक ही फॉलो किया जाए, वो आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। एक इदा दी मूवी भी सी तारे जमीन पर जिहदे विच जिहड़ा वो हीरो सी जिहड़ा करैक्टर चाइल्ड करैक्टर सी उसनू जिहड़े अल्फाबैट है ये इदा उड़दे हुए नज़र आते शायद पुट्ठा लिखता सी। मैनूं लगता वो जिहड़ी मूवी है वो सारियां ने ही वेखी होनी है। उसका एक गीत है बम बम बोले, वो गीत आप इंजॉय करते हैं।

बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। गर्मियां दियां छुट्टियां तो हूं तो पहला ही साढ़े सारियां दे प्लान बन जाने कि आपां किते कदों घूमन जाना है, आपां दोस्तां दे नाल जाना है, फैमिली दे नाल जाना है, किन्ने दिल दिन दा प्लान आपां कर रहे हां, प्रॉपर प्लानिंग सब कुछ हो जांदी है। ते साडा सारियां दा इक इह हुंदा है कि हां जिथे भी आपां जा रहे हां ठंडी जगह होनी चाहीदी है, पहाड़ होने चाहिए ने, नदियाँ होनी चाहिए, इदा की जी प्लेस है कि उत्थे जाके सुकून तो मिले।

0: Digital 411 Draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दिस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। सलोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सलोवाकिया दे सर्वोच्च सन्मान द ऑर्डर ऑफ वाई डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास नाल नवासिया। प्रधानमंत्री मोदी अज फ्रांस के एवियान च जी 7 शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैणगे। कैनेडा अते इंग्लैंड दे प्रधानमंत्रियां अते संयुक्त अरब अमीरात दे राष्ट्रपति नाल मीटिंगां वी करनगे। सरकार ने डीजल अते हवाबाजी टरबाइन ईंधन ते बरामद ड्यूटी वधाई। पेट्रोल ते बरामद ड्यूटी विच कोई तब्दीली नहीं। अते भारतीय टैंकर दिशा ने 62,370 मीट्रिक टन LNG नाल हॉर्मुज़ पंचोड नूं सुरक्षित ढंग नाल पार कीता। ते हुण खबरां विस्थार नाल। सलोवाकिया दे राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रेनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सलोवाकिया दे सर्वोच्च राज सन्मान द ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास नाल सन्मानित किया। श्री मोदी ने इस वकारी सन्मान लई राष्ट्रपति सरकार अते सलोवाकिया दे लोकां दा दिलों धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि यह सन्मान भारत के 140 करोड़ लोगों अते

0: खबर इतनी पक्की सी इतनी मजबूत सी कि पाकिस्तान के अंदर जो कहने ना घर में घुस के मारेंगे उन्होंने 9 टेरर टारगेट्स के ऊपर हमला किया। 1971 के जंग के बाद पहली बार सी कि पाकिस्तानी पंजाब के शई फौजी हमला किया। हिंदुस्तान की मिलिट्री हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की एक इच्छा शक्ति एक मजबूत इरादा एक मजबूत डिसीजन मेकिंग द बेहतरीन ग्राउंड के ऊपर मुजहरा।
1: एनडीए सरकार दहशतगर्दी खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति प्रति दृढ़ वचनबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल आकाशवाणी खबरों लई जलंधर तो मैं राजेश बाली।
2: तरल कुदरती गैस एलएनजी लेके आ रहे टैंकर दिशा ने हॉर्मुस पांचोट नूं सुरक्षित ढंग नाल पार कर लिया। पछमी एशिया में जंग शुरू होने तों बाद इस जल मार्ग तो लंघन वाला पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर च 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है। यह अमरीका ते ईरान दरम्यान एक शुरुआती जंगबंदी समझौते के ऐलान तों बाद हॉर्मुस पांचोट तों लंघन वाले पहले व्यापारक जहाजों विचों एक है। केंद्रीय गृह सकत्र गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा तो पहला सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा करने लिए एक उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहूलत सुरक्षा प्रबंधा ते परीक्षा प्रक्रिया की निरपक्षता ते विशेष ध्यान दिंदिया मुड़ परीक्षा लिए सूबा सरकारां दी तैयारियां की समीक्षा की। गृह सकत्र ने सारियां राज सरकारां केंद्र शासित प्रदेशां ते केंद्रीय एजेंसियां नूं सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश दिए ने। श्री मोहन ने राज्यां ते केंद्रीय शासित प्रदेशां नूं विद्यार्थियों लिए सुचारू यात्रा यकीनी बनाने की अपील की। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने पूरा सहयोग देने का भरोसा दिता है। अयोध्या के राम मंदिर विच दान ते कीमती वस्तां दी दुरवरतों के इल्जामां लई जांच वास्ते बनाई गई विशेष जांच टीम SIT ने अज अपनी जांच शुरू कर दी है। SIT की अगवाई लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इस विच पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल किरण एस अते वित्त विभाग के विशेष सकत्र नील रतन इसके मैंबर ने। सारे मैंबर ने कल अयोध्या कमिश्नर अते जिला मैजिस्ट्रेट के नाल राम मंदिर कॉम्पलैक्स का दौरा किया। अमरीका ते ईरान ने लगभग 4 महीने के लंबे टकराव खत्म करने लिए एक समझौते से सहमति जताई है। इस नाल पछमी एशिया च तनाव घट होने दी उम्मीदां वध गईयां ने। दोवां मुल्कां दे अधिकारियां मुताबक समझौता पत्र ते डिजिटल ढंग नाल दस्तखत किए गए ने ते रस्मी दस्तखत शुक्रवार नूं स्विट्जरलैंड दे जुनेवा च होणगे। इस समझौते नाल हॉर्मुस पांचोट नूं दुबारा खोलण समुद्री आवाजाई नूं बहाल करन ते ईरान दे परमाणु प्रोग्राम समेत होरनां मुद्दयां ते 60 दिनां दी गल्लबात शुरू करन दा राह पदरा हो गया। इस ऐलान तों बाद अंतरराष्ट्रीय तेल दीआं कीमतां च गिरावट आई है। अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रस्मी दस्तखत तों बाद समझौते दे पूरे वेरवे जारी कीते जाणगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल सर्वसम्मति नाल इक मता पास किया है जिस विच अफगानिस्तान के तालिबान शासकों नूं औरतां ते अपनी कार्रवाई तुरंत बंद करन अते अफगानिस्तान के अंदर वख-वख धड़ियां नूं संबोधन करन दी अपील की गई है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पछमी राजस्थान जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के कुछ हिस्सों च गरज चमक नाल तेज़ हवावां चलन की पेशीनगोई की है। इस दौरान अज पंजाब के फाजिलका समेत होरना कई थावां ते मीह पै रहा है ते कई थावां ते बदलवाई बनी हुई है। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो सलोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास नाल सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के वियान च G7 शिखर सम्मेलन च करेंगे शिरकत। सरकार ने डिजिटल ते हवाबाजी टरबाइन ईंधन ते बरामद ड्यूटी वधाई। पेट्रोल ते बरामद ड्यूटी च कोई तब्दीली नहीं। भारतीय टैंकर दिशा ने 62,370 मीट्रिक टन LNG नाल हॉर्मुस पांचोट नूं सुरक्षित ढंग नाल पार किया। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर 1:10। नमस्कार।

राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन ने रूपगढ़ जिले विच आवारा कुत्तियां दे मामले विच हमले करन विच 8 साल बच्ची दी मौत होन दा अपने तौर ते नोटिस लैंदियां पंजाब दे मुख सकत्तर नूं 2 हफ्तियां अंदर मामले दी वेरवे सेहत रिपोर्ट पेश करन लई कहा है। अयोध्या दे राम मंदिर विच दान अते कीमती वस्तां दी दुरवरतों ते इल्जामां दी जांच लई बनाई गई विशेष जांच टीम ने अपनी जांच शुरू कर दित्ती है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पश्चिमी राजस्थान जम्मू कश्मीर अते लद्दाख के कुछ हिस्सों में गरज चमक नाल तेज़ हवावां चलन की पेशनगोई की है। ए सी जी हुण तक दी एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

कभी खुशी कभी गम। बिल्कुल दोस्तों, जिद्दां दा फिल्म दा नाम सी उन्नी सोहनी फिल्म सी, ते जिंदगी दा भी दस्तूर यही है कि जिंदगी दे विच कदी तुहाडी खुशी होएगी, कदी हर पल जिहड़ा है ओह गमनुमा हो सकदा है ते नहीं भी हो सकदा है। देखो मैं हर पल दी गल कीता है कि गमनुमा किवें हो सकदा है, क्योंकि जे तुसी सोचोगे, वो कहिंदे आ ना कि जेकर तुसी किसे पल नूं जिउणा है, जिंदगी दे जिहड़ा असल दस्तूर है, जेकर किसे पल नूं जिउणा है तां दुख दे विच वी इंज जिओ कि दुख कवे भाई इह तां मनदा ही नहीं मैनूं। कभी खुशी कभी गम फिल्म दा किन्ना सोहना गीत सी बोले चुड़ियां। ते हुण मेरे कोल जिहड़ा अगला गीत है, फिल्म दा नाम है कल हो ना हो, इट्स द टाइम टू डिस्को। क्योंकि तुहाडा मैनूं पता है लगातार जिहड़े गीत चल रहे है उहनां दे उत्ते नच्चण दा मूड बणिया होया, तुसीं नच रहे हो ते प्रोग्राम नूं इंजॉय कर रहे हो, आरजे रणजीत सोहणे सोहणे गीत तुहानूं ला रहा है। ते हुण तों कुझ पलां बाद इक इदां दा प्रोग्राम होणा जिहड़ा ज़्यादा पसंदीदा है। पर उस तो पहला हजे साढ़े तो लगभग 16 मिनट ते 33 सैकेंड का समा पिया होया इस प्रोग्राम का, पर तुसी किते नहीं जाना। आप तो जिहड़ा रेडियो है ट्यून इन किया होया है, अपने दोस्तों नू साख संबंधियों नू रिश्तेदारों नू होरां नू भी कहो कि प्रोग्राम गीत बहार के नाल नाल होर भी सोहने प्रोग्राम करने हैं, क्योंकि आरजे रणजीत अज आया होया है। तो गीत बहार प्रोग्राम के जिहड़ा मैं तुहानू कहा सी ना गीत सुनाउणा, वो सुनाउणा जरूर है क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है।

0: एसन एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: बूट पॉलिश तेल मालिश एक पेन देना चार पेन फ्री
2: ताजी करी जल्दी पांच रुपये
3: वाजो अपने रामा मंडी तलन उच्चा कोडली मूसा पट मेली रहा जटा बड़ा पट लेता गलाया फ्लोर अपना समराड़ी वाले वाजो पैन जी समान लदो जी
4: पर भीरे बस चलनी कदो मेरे नाल गली पैन नु भी कोई ना
5: ओ फिकर ना करो जी सफर ते चले हो तो बस अपना साथी बना लो एफएम रेनबो नु टाइम के दा लंग जु पता भी ना चलू हियर वी गो विद एफएम रेनबो।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 144-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ए मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट ते बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होवेगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या ओहे ठीक है पुत्र।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसकी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: किसे होर दी मैं फड़ लई बाए तू ही आजा सोनिए नी तैनू केड़ी नाए हाय तू ही आजा सोनिए नी तैनू केड़ी नाए
1: हुण मैं ना आई
0: गल दिल दी किवें मैं समझावां गल दिल दी किवें मैं

वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम मिटे मेलोडीज। कमर्शियल तो पहला तुसी गीत सुन के हटे हो, बस एक चुप सी लगी है। हिम्मत कुमार दी आवाज दी गल करिए तां इहो जिही मखमली आवाज जिसनों बहुत ही जो गीत दिते ने, लिखे हुए गीत दिते ने, गुलजार हुरां दे दिते हुए ने। हुण तुसी गीत सुनोगे शर्त मूवी तो ना दे चांद होगा, जिसनों गाया है हिम्मत कुमार ने ते लिखा है SH बिहारी ने। इंजॉय करो मिटे मेलोडी दा ए मेलोडियस की।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन AIR दे जरिए दोस्त इस वेले FM रेनबो चैनल दे नाल जुड़े हुए हैं। हुणे तुसी प्रोग्राम सुन रहे सी मिडडे मेलोडीज़ अपने RJ दोस्त रणजीत दे नाल। हुण तो कुछ ही पलां च ठीक 2 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिलाज शायर है।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम दे विच तुहाडी शायरी साढ़े तक पहुँच चुकी है जी। सो अज की पहली शायरी साढ़े तक राम स्वरूप अरोड़ा जी ने भेजी है चौंक शेलियाँ सुल्तानपुर लोधी तो। की लिख रहे हैं जी, आओ पढ़ते हैं। कि हादसों की जद पे है तो मुस्कुराना छोड़ दो, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, और तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कह दो आंखों में आना छोड़ दे, और प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के तो देख, प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के देख, एक तेरा दर ही है क्या हम तो जमाना छोड़ दें। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। वसीम बरेलवी साहब दिया चंद लाइना शायरी दिया साढ़े नाल सांझियां कर रहे सन साढ़े अजीज दोस्त राम स्वरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगली शायरी साढ़े तक कान पहुंची है जी कुलविंदर टेलर जी, वीपीओ खंदोड़ा लागे आदमपुर। लिख रहे ने कि तुम कहते हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है, मगर जब फूल खिलते हैं तो उन्हें तोड़ लेते हो, और तुम कहते हो तुम्हें बारिशों से प्यार है, मगर जब बारिश होती है तो छतरी खोल लेते हो। खौफ आता है मुझे तुम्हारी इस मोहब्बत से कि तुम प्यार तो करते हो मगर वजूद छीन लेते हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। और साढ़े को अगली शायरी लोहा बाजार मलेरकोटला तो राकेश कुमार जी लिख रहे ने, तेरी तस्वीर तो तेरा हाल पुछया कि मैं भुल गया साडा प्यार पुछया, कदे आखदे सी तेरे बिना नहीं सरना, अज किवें सर गया साडे बिना सवाल पुछया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कुमार जी अपनी शायरी साढ़े तक साझी करन दे लई। अगली शायरी पहुँच चुकी है जी बलविंदर सिंह जी दी पिंड मोड़जन सिखा हनुमानगढ़ तो, कि तू मिल जाए मुझे इतना ही काफ़ी है, मेरी हर सांस में बस यही दुआ मांगी है, जाने क्यों दिल खिंचा चला आता है तेरी तरफ, क्या तूने भी मुझे पाने की दुआ मांगी है। मैं क्या जी, जी दुआ दोनों पासियों होवे ना तो कबूल होण नूं मिंट लगेगा। सो होर भी बहुत सारे दोस्तों दियाँ साढ़े तक प्यारियाँ प्यारियाँ अपने दिल के जज्बातों सांझिया कर दियाँ जो शायरी ने वो पहुँच चुकी है जी, वो भी असी शायरी रीड करांगे। पर हुण समा हो गया जी साढ़े अगले ट्रैक का, अगले ट्रैक वल वध दियाँ जी। केवी दी आवाज़ दे विच सुनते हैं सोनपुरी, और मैं लगता है कि शायद इसी दी ही आखिरी शायरी दे विच बलविंदर

वेलकम बैक जी, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी जलंधर और 103.6 मेगाहर्ट्स से आकाशवाणी अमृतसर न्यूज़ ऑन AIR के जरिए दोस्त इस वेले प्रोग्राम सुन रहे ने जी एफएम रेनबो चैनल ते जो चल रहा है दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम दे विच अगली शायरी पाली पहला जी दी साडे कोल पहुंच चुकी है। शायरी तो नहीं, बस उन्होंने सिर्फ दो चार लाइनें लिखियां। कहिंदी कि सब तो वड्डी हार उस वेले हुंदी है जदों पता लगता है जिसनूं तुसीं सब कुछ मन्नी बैठे उहदे लई तुसीं कुछ भी नहीं। पाली जी, बस मैनूं लगदा असीं भी तुहानूं सब कुछ मन्नी बैठे हाँ, पर तुसीं सानूं जो शायरी नहीं भेजी ना, सानूं लगदा असीं तुहाडे वास्ते कुछ नहीं हैगे। शायरी हो जाती ना पाली जी, क्या ही बातें होनियां सी। पर खैर, तुसीं साडे तक पहुंचे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले जी, प्रेम मार्केट बठिंडा तो अमरजीत जस्सल जी साढ़े कोल आए ने। उन्होंने भी सेम शायरी तो नहीं लिखी, बस दो लाइना कि कल मेरा था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ। अगली शायरी साढ़े तक पहुंच चुकी है जी, साढ़े दोस्त मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद अरमान पिंड खुर्द जिला मलेरकोटला तो लिख रहे ने कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और शायद तुम्हारी नाराज़गी बिल्कुल सही भी है। मैं अपनी गलती से सही साबित करने नहीं आया, बस अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब से तुमने मुझसे बात करना कम कर दिया है, तब से मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी अहम हो। तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरी हर गलती का एहसास कराया है। अगर मेरी किसी बात ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। सो बिल्कुल जी, माफ़ी तुहानू जरूर मिलेगी और तुसीं इन्नी खूबसूरत लाइना जो लिखिया ने, थैंक यू सो मच दोस्तों अपनी शायरी साढ़े तक पहुँच दी करन दे लई। मैं कहा जी, जे माफ़ हो गया होवे ते हुण प्यार भी हो जाना चाहिए। सो एक प्यार भरिया ट्रैक आ रहा जी मिक्की सिंह दी आवाज़ दे विच।

एक शायरी आई है जी, शायरी कम, दिल के हालात ज़्यादा लग रहे हैं कि अल्फाज मेरे इश्क की आजमाइश थोड़ी है, अल्फाज मेरे इश्क की आजमाइश थोड़ी है, ये एहसास है मेरे दिल का कोई नुमाइश थोड़ी है। हाँ तुम्हें आज़ाद परिंदे की तरह जीना पसंद है, माना तेरे दिल में मेरी रिहाइश थोड़ी है, अल्फाज मेरे इश्क की आजमाइश थोड़ी है, कि मैं तो दिल के हर कोने में तुम्हें बिठाए रखती हूँ, कि मैं तो दिल के हर कोने में तुम्हें बिठाए रखती हूँ, फूलों की बगिया में सजाए रखती हूँ, ये मेरी रवीश मतलब तरीका, ये मेरी रवीश है तुम्हें चाहने की, तुम भी मुझे मेरी तरह चाहो ऐसी मेरी ख्वाहिश थोड़ी है, अल्फाज मेरे इश्क की आजमाइश थोड़ी है, ये एहसास है मेरे दिल का कोई नुमाइश थोड़ी है। कुछ शायरियां दोस्तों इदां दी हुंदियां ने कि आरजे नूं भी उसका रिप्लाई करन दे लई मजबूर कर दिंदे ने, सो ये शायरी ओह सी, ते मैं भी फिर मैं कहा चलो थोड़ी जी रिप्लाई लिख ली जावे ते क्या ही बात होएगी। सो मैं लिखिया जी कि

तू समझे कि तेरे इश्क की कदर मुझसे ज़रा भी नहीं है, तू समझे कि मेरे कि तेरे इश्क की कदर मुझे ज़रा भी नहीं है, मेरे दिल में तेरी चाहत की कोई परछाई भी नहीं है, मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब बेरुखाई थोड़ी है, दिल में बसी हो तुम बस हर बात बताई थोड़ी है। कि हाँ मुझे उड़ते बादलों का सफ़र करना पसंद है, पर तेरे नाम की मेरे दिल में रिहाई थोड़ी है, मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब बेरुखाई थोड़ी है, दिल में बसी हो तुम बस हर बात बताई थोड़ी है। कि मैं भी तेरी यादों को सीने से लगाए रखता हूँ, अपने हर ख्वाब में तेरा घर सजाए रखता हूँ, ये मेरा अंदाज है मोहब्बत को निभाने का, हर एहसास लफ्ज़ों में कह दूँ ऐसी गवाही थोड़ी है, मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब बेरुखाई थोड़ी है, दिल में बसी हो तुम बस हर बात बताई थोड़ी है। कि तू बिन मांगे इतना प्यार लुटाती है मुझ पर, तू बिन मांगे इतना प्यार लुटाती है मुझ पर, तो क्या मैं तुझसे कम वफा निभाता हूँ इस सफ़र, के बस फ़र्क इतना है कि तू जाहिर कर देती है और मेरी मोहब्बत की हर बात सुनाई थोड़ी है। कि मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब बेरुखाई थोड़ी है, दिल में बसी हो तुम बस हर बात बताई थोड़ी है।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती भी झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या हैं? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने

0: मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IVRS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया।

0: उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों, बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
3: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, Only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओह जॉन्सी।
4: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ

0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी। मंद मंद हवा चल रही थी।

0: आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ, हाँ, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
1: ओह,
2: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर

0: बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे।

0: कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जोंसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

0: जो डॉक्टर में आज का विषय है डीलिंग विद ऑस्टियो आर्थराइटिस और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे आज के एक्सपर्ट आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर दीपक जोशी. आप डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक आपका आकाशवाणी के स्टूडियो.
1: बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद.
0: तो सर ये जो विषय है ऑस्टियो आर्थराइटिस तो हम सुनते तो बहुत हैं गठिया का रोग है बहुत कॉमन रोग है. हम समय समय पर रेडियो डॉक्टर में इस विषय को उठाते रहते हैं क्योंकि बहुत हमारे पास प्रश्न आते हैं कि इस रोग से संबंधित लोगों को जिज्ञासा है उनकी कुछ समस्याएं हैं. तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि हम विषय को समझ लें क्योंकि हम आज ऑस्टियो आर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन बना रहता है क्या ये दो बीमारियां एक सी हैं आर्थराइटिस एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस ये सेम है कि अलग है और अलग है तो क्या अलग है.
1: बेसिकली जब हम आर्थराइटिस बोलते हैं तो आर्थराइटिस बहुत तरह की आर्थराइटिस होती हैं जिसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस एक है. लेकिन आम भाषा में अगर हम लेके चलें जब हम आर्थराइटिस लेके चलते हैं तो हम बेसिकली रेफर ऑस्टियो आर्थराइटिस को ही करते हैं. अच्छा. जबकि और तरह की आर्थराइटिस जैसे होती हैं जो ब्लड में की वजह से होती हैं जैसे जिसको कहते हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के उसमें कहते हैं और बीमारियाँ होती हैं जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या फिर आपका गाउट हो गया गाउटी आर्थराइटिस हो सकता. तो ये बड़ी सारी और तरह की भी होती हैं जो कि ब्लड में एक स्पेशल टाइप के एंटीबॉडीज होती हैं जिसकी वजह से होती हैं. और ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली टिपिकली जो उम्र से रिलेटेड आर्थराइटिस होती है जिसमें कार्टिलेज घिसने शुरू हो जाती है सब में घिसती है लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज रिलेटेड आर्थराइटिस है. तो इन जनरली जो बेसिकली अगर हम आर्थराइटिस माने तो हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही कहते हैं.
0: जी तो जहां तक मुझे समझ में आता है आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ. तो आर्थराइटिस इज अ ब्रॉडर टर्म उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक है पर ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन
1: इज द मोस्ट कॉमन.
0: अगर मैं सही समझा और अगर आप श्रोताओं ने भी सही समझा है तो बिल्कुल यही विषय है हमारा. आज हम आर्थराइटिस से जुड़े कुछ सवाल आपके ले सकते हैं लेकिन साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को अच्छे से डिस्कस करें इसको अच्छे से जानें इसके बारे में समझें और इसकी जो समस्या जो होती है जो डॉक्टर साहब ने बोला एजिंग से रिलेटेड ज्यादा होती है तो ये क्यों हो जाती है और किस तरह से इससे हम बच भी सकते हैं ये भी डॉक्टर साहब जरूर बताएंगे. तो आपके मन में कोई प्रश्न है आप कुछ पूछना चाहते हैं आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं आपके मन में भी समस्याओं का या समाधान चाहते जरूर होंगे आप तो बिल्कुल हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाइए इसको सुनिएगा जरूर. हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डॉक्टर दीपक जोशी हमारे साथ रहेंगे कार्यक्रम के अंत तक. तो जो भी पूछना है चूकिएगा नहीं जरूर पूछ लीजिएगा. लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक.
2: इश्क वो बला है इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है दिल से होता है शुरू

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार।

0: वेलकम बैक. आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और रेडियो डॉक्टर में हमारा जो आज का एपिसोड है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पर केंद्रित है. हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर. डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं पहले इनसे. हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, बताएं.
1: शालिनी मित्तल जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार.
0: जी चट्ठा जी नमस्कार. आप पहले कॉलर बन गए हैं आज के प्रोग्राम के.
1: हम हमेशा फर्स्ट रहते हैं.
0: आप हमेशा फर्स्ट हैं. चलिए बहुत अच्छी बात है. आप प्रश्न करिए, डॉक्टर साहब इंतजार में हैं आपके क्वेश्चन के.
1: कार्यक्रम सबसे बेस्ट और फर्स्ट है, वैसे ही हम भी फर्स्ट.
0: अरे थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए. और चलिए प्रश्न कर लें. डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपक जोशी.
1: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
2: हाँ जी हाँ जी.
1: डॉक्टर साहब मेरा सवाल यह है कि आर्थराइटिस और ऑर्थोआर्थराइटिस इन दोनों में फर्क क्या है.
0: ये तो हमारा पहला प्रश्न था चट्टा जी. आप फर्स्ट नहीं हुए, हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया.
1: आगे जोड़ के उसको रिपीट नहीं पूछा, उसका जोड़ के देख रहा हूँ.
0: अच्छा चलिए.
1: उसका ये है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका पता कैसे लगता है, और दोनों का इलाज एक साथ हो सकता है या अलग अलग होता है.
2: दोनों तरह की जो आर्थराइटिस है, हर आर्थराइटिस का इलाज अलग है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है. तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेके चलें कि पता कैसे लगता है कि एकदम से लगता है कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है. तो सबसे पहले जो हमने देखा है, जो हम मरीजों से भी पूछते हैं, सीढ़ियाँ उतरते समय दर्द नॉर्मली आता है कि उतरते समय हमें दर्द शुरू हो गया, या सीढ़ियाँ चढ़ते समय में मतलब इंक्लाइन में जा रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं, तब जनरली दर्द शुरू होता है आगे पोर्शन ऑफ घुटनों में. तो सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है, तब इसका मतलब आपकी आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया और आपको अपनी बॉडी पर अब ध्यान देना पड़ेगा.
0: जी तो मैं सिम्टम्स जानना चाह रही थी डॉक्टर साहब. तो एक सिम्टम आपने ये बताया और ये इनिशियल सिम्टम है कि सीढ़ी चढ़ते और उतरते वक्त पेन होना.
2: क्योंकि कॉमनेस्ट जो ज्वाइंट इन्वॉल्व है हिंदुस्तानियों में वो है घुटने का ज्वाइंट, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में. बाकी ज्वाइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो लेट स्टेज में होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो नी होता है. तो नी में सबसे पहला सिम्टम जनरली जो मरीज हमें बताते हैं कि हमें सीढ़ी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं जितना मर्जी चला लो, लेकिन सीढ़ी जैसे ही उतरते हैं तो उतरा नहीं जाता, धीरे धीरे उतरना पड़ता है.
0: तो एक तो ये सिम्टम आपने बता दिया जो सबसे पहले होता है. इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और बताना चाहें जिससे लोग समझ जाएं कि हमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो रही है.
2: तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली अगर हम लेके चलें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है हड्डी का घिसना, जो कि उम्र के साथ साथ नॉर्मल है. जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसे जो हमारी कार्टिलेज है वो बहुत ही स्मूथ, जो कार्टिलेज जो जोड़ को चलाने वाली है, जो जोड़ के बीच में जो कार्टिलेज होती है वो स्मूथ होती है, उसमें लुब्रिकेशन होती है. मशीन की गरारी की तरह आप समझ लें कि मशीन की गरारी जब नई आप बनाते हो तो उसके जो एजेस होती हैं वो बहुत स्मूथ होती हैं. फिर जैसे जैसे वो मशीन चलती रहती है, आफ्टर सम टाइम वो घिसना शुरू हो जाती है, उसमें रगड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं. तो ऐसे ही इस कार्टिलेज में विद एज जैसे जैसे चलती जाती है वैसे वैसे इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं. तो जो सिम्टम्स शुरू होते हैं ये स्पेशली होता है कि दर्द होना, पहले होता है डिस्कम्फर्ट कि कुछ एक्टिविटी करने में डिस्कम्फर्ट, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में, सीढ़ियाँ उतरने में, या पहाड़ पे चढ़ने में, या बहुत लंबा चलने के बाद कभी थोड़ा बहुत दर्द शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है. आप अगर 3 किलोमीटर चल रहे थे पहले तो 1 किलोमीटर आप चलना शुरू हो जाते हो. और आमतौर पर क्या होता है कि हल्की सी चोट लगती है उससे दर्द इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है. तो नॉर्मली ये सारे सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के.
0: जी एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो
3: जी नमस्ते मैम.
0: जी नमस्ते.

0: जी आपको आपको बहुत धन्यवाद मैम, दोनों डॉक्टर साहब को भी आपको भी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अपना नाम बता दीजिए।
0: जी नाम है रहमत अली मैम।
1: जी रहमत अली, कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ?
0: जी हरियाणा से मैम।
1: अच्छा चलिए, बहुत अच्छा है आप कार्यक्रम सुनते हैं।
0: जी जी बराबर सुनते हैं मैम।
1: चलिए आज आप प्रश्न भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, स्वागत है, आप प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
0: जी डॉक्टर साहब से मेरी ये दरखास्त है कि हम सीढ़ी चढ़ते उतरते मेरा जो है पैर बहुत दर्द हो रहा है, क्या क्या बात है?
2: अगर सीढ़ी चढ़ते उतरते दर्द होता है, जैसे मैंने बोला जो कॉमनेस प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, कॉमनेस प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस होना। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया, हड्डी घिसना शुरू हो गया, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज को, जैसे जो सफ़ेद बाल हो गया उसको तो आप दोबारा बदल नहीं सकते ना, ब्लैक नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, हमारी बॉडी को चलाने के लिए, जोड़ को चलाने के लिए एक तो कार्टिलेज चाहिए, लिगामेंट चाहिए, ये सब बूढ़ी होती रहती हैं, लेकिन जो सबसे जवान रहती है वो होती है हमारी मांसपेशियां या मसल्स, वो उम्र के आखिर तक जवान रहती हैं। तो आपको उनकी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग्स जो मसल्स होती हैं हमारे घुटने के आसपास या जो भी जॉइंट इन्वॉल्व हैं उनके आसपास की मांसपेशियों को कम स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो आपका फोर्स है, जो बॉडी का वजन है, वेट जो जोड़ के बीच में से जा रहा है, वो जो शॉक्स हैं उसके, वो आपकी मांसपेशियां ज़्यादा अब्जॉर्व करें और कार्टिलेज पे कम से कम जाए, जिससे आपको दर्द नहीं होगा। और जिन मरीजों को भी हम एक्सरसाइज बताते हैं उनको बहुत जल्द ही आराम मिलता है, और शर्तिया इलाज, शर्तिया बेसिकली हम कहते हैं कि उनको डेफिनेटली आराम मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब एक बात है कि आपसे अगर हम मिलना चाहें तो मिल सकते हैं ना?
2: हाँ जी बिल्कुल मिल सकते हैं आप हमसे, हम सब
1: जी। मैं बता देती हूँ आपको पुनः कि डॉक्टर दीपक जोशी हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब से आप वहीं मिल सकते हैं। बहुत भीड़ होती है डॉक्टर साहब बताते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, पर डॉक्टर साहब सबसे मिलते जरूर हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, आप अपना नाम बता दें।
3: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल
2: रहा हूँ।
3: डॉक्टर साहब जैसे कि हमारे रिश्तेदारी में एक महिला है, तो उनको सीढ़ी जब चढ़ती है तो हर स्टेप पे एक ही कदम रखती है, जो राइट का रखा तो फिर राइट का ही दूसरे पे रख के, फिर जैसे बच्चे चढ़ते हैं सीढ़ी इस तरह ही चढ़ती है और इस तरह ही उतरती है,
2: वैसे ठीक चलती है।
3: पैर का जो मूवमेंट है मतलब उसको ज्यादा एक्टिव नहीं ले पाती, तो क्या ये गठिया है या इनके बाकी ज्वाइंट में इसकी थाई की प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आता। तो उन्होंने अभी इलाज तो कराया पर आराम तो है नहीं इनको।
2: एक्चुअली डॉक्टर को दिखाना होता है। अब गठिया जिसको कहते हैं आमतौर पे एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डी की रोग, और गठिया जब होता है तो जनरली हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकती है। अगर बहुत सारे जोड़ इन्वॉल्व हैं, सारे जोड़ों में दर्द है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ब्लड टेस्ट करा के कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्टिव या और तरह की आर्थराइटिस ना हो। पर आमतौर पे जो ये आप कह रहे हो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये हर आर्थराइटिस में होता है, पर अगर उम्र के साथ हो रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ना तो फिर एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कुछ खास तरह की दवाइयाँ इसमें लेनी पड़ती हैं। ज़मीन पर नहीं बैठना होता है, आलती पालती नहीं मारनी होती है जिससे जॉइंट के अंदर प्रेशर ज्यादा पड़े, और थोड़े टाइम जब दर्द बढ़ जाता है तो उस वक्त आप जैसे सर्दियां होगी तो उनमें दर्द
3: ठीक हो सकता
2: है, बिल्कुल ठीक हो सकता है एक्सरसाइज से। बहुत ही आखिरी स्टेज है, सपोज करो स्टेज 4 पहुंच गई तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, अदरवाइज ये एक्सरसाइज और दवाइयों से डेफिनेटली बेहतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज तो रिवर्स तो नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ेगा और दर्द में आराम मिलेगा।
1: जी धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, बहुत सारी बातें आपने पूछी और बहुत सारी बातें हमें इस सवाल में पता चली। डॉक्टर साहब आपने कहा कि अगर फोर्थ स्टेज का है तो सर्जरी करनी होती है, मुझे यही पूछना था कि सर्जरी की नौबत कब आती है, तो आपने बताया कि जब बहुत बढ़ जाता है, गंभीर हो जाता है। हाँ। तो पहले ये बताइए कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कितने प्रकार का हो सकता है?
2: बेसिक हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन साइंटिफिक वे से क्लासिफिकेशन करें हैं तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है ना, वो एक तरह से हम लेके चलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो होती नहीं है लेकिन डेफिनेटली एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। स्टेज 3 जब होती है उनमें, स्टेज 1-2 में बेसिकली यही होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द, या बहुत लंबा चढ़ ले तब दर्द हो जाता है। जो जब स्टेज 3 और फिर स्टेज 4 होती है तो बेसिकली कार्टिलेज इतनी खत्म हो जाती है कि हड्डी हड्डी से रगड़ खानी शुरू कर देती है। तो जो मरीज थोड़ा सा ही चलता है तो हड्डी से, जब भी हड्डी से हड्डी, क्योंकि कार्टिलेज एक ऐसी चीज है जो कि जो बॉडी में जिसमें दर्द की जो नर्व्स हैं, जो ब्रेन हमारा, हम दर्द कब हमें होता है, जब हमारे दिमाग को

0: पास नर्व्स जो पेन वाले फाइबर्स हैं वो हमारे ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन परसीव करता है, दिमाग परसीव करता है कि पेन को. अब जब ये कार्टिलेज घिस जाती है तो जो हड्डी है, हड्डी हमारी बहुत पेनफुल स्ट्रक्चर है. जैसे आप सोचो फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर होता है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है. तो हड्डी जब हड्डी हड्डी से टकराती है, मतलब दो नसें एक दूसरे से टकरा रही हैं एक तरह से, तो दिमाग को बिल्कुल एकदम से झंझनाहट होती है और दर्द की बहुत वो होती है और पेशेंट कराह उठता है. जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि हर कदम पर दर्द है तो ऑपरेशन कराना चाहिए और ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल है.
1: जी, तो ऑपरेशन मतलब उसको ट्रांसप्लांट ही हो गया,
0: घुटना बदलना, नी, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या बाकी जो.
1: तो ये लास्ट स्टेज में करना,
0: ये लास्ट स्टेज में.
1: तो ये लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचे इसके लिए आपने बताया कि एक्सरसाइज की बहुत आवश्यकता है. हमारे एक कॉलर वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब. हेलो.
2: हाँ जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही. और पहले तो शालिनी मैम और डॉक्टर साहब दोनों को तहे दिल से नमस्कार और आभार.
1: नमस्कार जी.
0: नमस्कार.
2: अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ डॉक्टर साहब. मुझे ना 2004 से ही कमर में और गर्दन में जो है वो परेशानी है. कमर में जो है जो डिस्क है उसमें कोई परेशानी नहीं है, जो दोनों ये हिप्स है ना ये दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है इसमें प्रॉब्लम हो रही है. और गर्दन में भी होती है ना पीछे नेक की जो हड्डी होती है ये दाएं तरफ, बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ ज्यादा. अब क्या होता है कि आगे की ओर अगर मैं बेंड होता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, यूं लग मेरे हिप्स के थ्रू ही प्राण निकल जाएंगे. और अगर मैं दाएं बाएं या पीछे की ओर बैंड फोल्ड होता हूँ तो मुझे जो है उसमें रिलीफ मिलता है. तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इज इट ऑस्टियोपोरोसिस या ये कोई और बीमारी हो सकती है. इसके लिए मैंने आयुर्वेदा की दवा भी खा ली, ऑइंटमेंट, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी.
1: चलिए राजेंद्र जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सवाल समझ गए डॉक्टर साहब. जी
2: जी,
1: धन्यवाद.
0: जब आर्थराइटिस, ऑस्ट्रो आर्थराइटिस स्पाइन की होती है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन होगा या आपकी नीचे की स्पाइन है, तो उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं. तो एक तरह से इसमें भी जो रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे फेसेट जॉइंट्स हैं इसमें ऑस्ट्रो आर्थराइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी नैरो हो जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि नसों पर प्रेशर पड़ता है. तो जो आप बता रहे हो एक साइड में दर्द है, इस तरह के पेशेंट बहुत कॉमनली आते हैं आम ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी में, क्योंकि जो मांसपेशी है ट्रेपीजियस जिसको कहते हैं ये अकड़ जाती है. जनरली फिजियोथेरेपी और रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है. अर्नेस्ट रंडेल जो आप कह रहे हो हिप में पेन है, तो हिप में तो फिर एक्सरे करा के देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हिप में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, पर इन जनरली हमने हिंदुस्तानियों में कम देखा गया है ये हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो देखना पड़ेगा एवियन ना हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम ना हो, तो ये आपको एक्सरे करा के मतलब सलाह परामर्श करना पड़ेगा आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन से.
1: तो इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं राजेंद्र जी. एक और हमारे कॉलर हैं. हेलो.
3: हेलो, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से.
1: जी यशपाल जी.
3: शाली मैडम और डॉक्टर जोशी का बहुत बहुत नमस्कार.
1: जी नमस्कार. नमस्कार. जी.
3: मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ और कई बार ट्राई किया फोन करने को, लेकिन आज बहुत शुभ दिन ही फोन मिल पाया.
1: चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका फोन आज लग गया. हमारा फोन अति व्यस्त रहता है, आपको भी पता है, विशेषज्ञ होते हैं तो.
3: मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं आपका यहाँ भी देखता हूँ और एक जो आता है सैटरडे को सुबह वो भी सुनता हूँ.
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए, उनको पसंद करने के लिए.
3: स्वास्थ्य पत्रिका जो आता है.
1: जी स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत आता है, बहुत अच्छी बात है. आप उसको भी सुन रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं. चलिए आप प्रश्न कर लीजिए.
3: हाँ प्रश्न मेरे डॉक्टर साहब से ये है कि हड्डियों की जो बोन स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो डेक्सा स्कैन होता है रिकमेंड किया जाता है, तो वो कितना करेक्ट है और किस एज में एक नॉर्मल मेल और फीमेल को करवाना चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो विटामिन डी सप्लीमेंट होता है, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता विटामिन डी की कमी से, तो ये विटामिन डी कौन सा बेस्ट रहता है और उसको तरीका लेने का क्या है बेस्ट? क्या ये विटामिन K2 से कंबाइन भी किया जा सकता है? थैंक यू.
0: पहला सवाल था कि
1: ये डेक्सा स्कैन
0: के बारे में. हाँ, सो डेक्सा स्कैन ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की कमजोर, मतलब इट इज़ नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस, बेसिकली हड्डी कितनी कमज़ोर हो रही है उम्र के साथ साथ, हड्डी में कैल्शियम और उसका स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है. तो आमतौर पे हम 50 इयर्स के ऊपर हर फीमेल को और 60 इयर्स के 60 साल से ऊपर हर मेल को रिकमेंड करते हैं कि एक बार डेक्सा स्कैन कराना चाहिए. और ये बहुत ही सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है और इसके मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होता है ये, ठीक है. इससे हमें पता लग जाता है फ्रैक्चर रिस्क कितना है. अगर आपका डेक्सा स्कैन खराब है,

0: उस उम्र में, तो फिर आपको दवाइयों के साथ एवरी ईयर कराना पड़ेगा। अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको एवरी 5 ईयर कराना पड़ेगा। मैं ये हम रिकमेंड करते हैं जनरली पेशेंट्स को। दूसरा सवाल था कि
1: विटामिन डी सप्लीमेंट
0: विटामिन
1: की
0: डी
1: बात कर रहे थे।
0: सप्लीमेंट, नॉर्मली हमने देखा है कि हिंदुस्तान में मोस्टली जो लोग हैं विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो वी क्योंकि सन एक्सपोजर हमारा बहुत कम रहता है और डार्क स्किन भी है और पूरा बॉडी कवर रहती है, तो इसमें या तो आपको सनलाइट लेनी चाहिए, जो सनलाइट आप दिन की नहीं क्योंकि उसमें यूवी रेज होती हैं, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की जो स्लांटिंग रेज हैं वो बहुत इफेक्टिव रहती हैं अगर आपकी बॉडी एक्सपोज्ड है, तो उससे विटामिन डी बनता है। दूसरा, सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड हैं इस एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है आई थिंक 3 या 4 महीने इन्हें ईयर लेना है। ऐसा नहीं है कि पूरा साल लेते रहना, नहीं तो हाइपर विटामिनोसिस, विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो भी नुकसानदायक होती है। तो लिमिट में लेना है, 4 से 5 महीने आई थिंक इन्हें ईयर जो है साल में वो बहुत एडिक्वेट है, अलॉन्ग विद कैल्शियम अब्जॉर्बमेंट। विटामिन K2 के साथ लेना है या नहीं लेना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल विटामिन डी लीजिए, कोई भी विटामिन डी आप ले सकते हैं, उसमें हर तरह से है। अगर आपको कुछ GIT प्रॉब्लम है, आपको बार बार डायरिया या किसी को पेट ख़राब रहता है और लगता है कि विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जा सकता है। तो इंजेक्शन जैसे 6 लाख यूनिट्स होते हैं, तो मतलब एक इंजेक्शन करीब करीब 3 महीने की दवाई को कवर जनरली कर लेता है।
1: अच्छा, एक इंजेक्शन में उतनी
0: हाँ
1: रहती है।
0: हाँ
1: ओके,
0: हाँ जी,
1: एक इन्होंने ये और जानना चाहता है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, कि इसको कैसे लिया जाना है। क्या विटामिन डी की जो टैबलेट सैशे जो भी है उसको लेने की वो विधि होती है, पानी के साथ, दूध के साथ, रात में, दिन
0: हाँ,
1: में?
0: आजकल काफ़ी जेल बेस्ड टैबलेट्स होती हैं, आप
1: हाँ,
0: नॉर्मली पानी के साथ लें और
1: ले
0: दिन में
1: सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते हो, अर्ली मॉर्निंग आप ले
1: अच्छा,
0: लो, है ना, दूध के साथ भी ले सकते हो, सैशेट्स को आप पानी में मिला के ले सकते हो, दूध में मिला के भी ले सकते हो,
1: कोई
0: हर
1: ऐसा हार्ड एंड फास्ट
0: ऐसे
1: रूल नहीं
0: हार्ड
1: है?
0: एंड फास्ट रूल नहीं है,
1: अच्छा
0: ठीक
1: अच्छा
0: है।
1: ठीक है। हमारे पास मैसेजेस भी आ गए हैं, हमारे श्रोता हमको लिखकर भेज रहे हैं। प्रलीना सेन झारखंड से हमें लिखकर भेज रही हैं। इनका प्रश्न है, डज ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट टीनेजर्स ऑल्सो या सिर्फ एडल्ट्स को होता है, और व्हाट काइंड ऑफ डाइट वन शुड टेक टू अवॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस?
0: टीनेजर्स में जनरली नहीं होता है। टीनेजर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है फिर अलग तरह की, जनरली ब्लड बेस्ड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कॉमन होती है। ऑस्टो आर्थराइटिस तभी होगी अगर बचपन में चोट लगी है, उसकी वजह से कार्टिलेज ख़राब हो गई है,
1: अच्छा।
0: तो जनरली ना के बराबर ही आप समझो। रिगार्डिंग डाइट, डाइट टीनेजर के अगर हिसाब से देखें तो डेफिनेटली जो कैल्शियम रिच डाइट अराउंड जो 1000 mg कैल्शियम होना चाहिए वो डाइट में ज़रूर होना चाहिए। विटामिन डी भी ऑफ एंड ऑन लेना चाहिए। डाइट्री में जो बैलेंस डाइट है जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लीफी वेजिटेबल्स और जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो बैलेंस डाइट ज़रूर लेना चाहिए। बच्चे डेफिनेटली आजकल बाहर का फ्राइड फूड्स और पिज्ज़ा और इनमें खाते हैं, जो कि डेफिनेटली मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मानेंगे नहीं आपकी बात कि खाना बंद कर दो, तो बेसिकली है कि वो भी खाएं लेकिन जो हेल्दी डाइट है वो भी डेफिनेटली साथ साथ में लें। और दूसरा है कि जो पीक कैल्शियम है बॉडी का वो 30 साल तक बनता है, उसके बाद कैल्शियम डाउन होना शुरू हो जाता है, तो जो आपने एक्सरसाइज और व्यायाम और जो आपने कैल्शियम लिया है अप टू 30 ईयर्स तक, वही आपके पूरी जिंदगी के लिए काम आएगा, तो
1: वो ही
0: वो
1: बैंक है
0: पीरियड भी
1: हमारा।
0: वो आपका बैंक बन जाता
1: जी
0: है।
1: जी तो 30 तक बहुत ध्यान रखना है, और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है,
0: और
1: और
0: डाइट
1: खान
0: भी,
1: पान पे भी डॉक्टर साहब ने कहा विशेष ध्यान रखना है। पर डॉक्टर साहब आपने खुद ही कहा कि बच्चे आजकल, उनका खान पान उतना अच्छा नहीं है, तो क्या बच्चों को भी सप्लीमेंट्स देने चाहिए शुरू से ही?
0: आजकल हमें देने पड़ते हैं, बच्चे जैसे ग्रोथ होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, लेते ही नहीं है कैल्शियम, और बॉडी पेन, बॉडी एक बैक के एक जनरलाइज बॉडी पेन के साथ आते हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं उनको। पर आइडियली तो आइडियल अगर हम सोचें कि वो डाइट में लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर अगर नहीं ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है।
1: एक कॉल ले लेते हैं और उसके बाद हम एक प्यारा सा गीत भी सुनेंगे। हेलो
2: नमस्कार, मैम
1: जी। नमस्कार
2: डॉक्टर सर को नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मेघा जी बोल रही
2: मैं वैष्णवी से बात कर रही
1: जी। मेघा जी, हाँ प्रश्न कर लीजिए।
2: मेरे जो बुआ जी है उनको ना, मतलब जो पैर का ऊपर होते हैं जहाँ से पैर स्टार्ट होते हैं
0: हिप,
2: वहाँ पे बैक में मतलब पेन होता है। कब होता है? या तो वे चिड़िया चढ़ते तब, या फिर मान लें चारपाई पे बैठे हो पैर ऊपर करने लगे तब। ये क्या कारण है और इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
0: पैर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं लोअर बैक है तो लोअर बैक इस उम्र में डेफिनेटली, उम्र ज़्यादा है तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो स्पॉन्डिलोसिस जो कॉमन है, दूसरी जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस होना जो कि जिसके बारे में हम बोल चुके हैं, तो डेंसिटोमेट्री करानी चाहिए, फिजियोथेरेपी।

0: एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत दर्द है तो एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए कि रूल आउट करने के लिए कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर ना हो, और दूसरा कि आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोसिस किस तरह की है। ट्रीटमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, ठीक है
1: जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए मेघा जी, और अब यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, आपके सभी प्रश्नों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लिखते रहिए, हमें फोन करते रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आज बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, बात कर रहे हैं आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। आज का हमारा विषय डीलिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉक्टर दीपक जोशी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल, हमारे साथ रेडियो डॉक्टर के रूप में। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें हमें अभी बता दी हैं, कार्यक्रम में थोड़ा सा भाग अभी बाकी है। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: मैं बीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी,
2: मेरा पूछना है कि मल्टी विटामिन का ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई सामंजस्य है? क्या कोई ऐसा विटामिन है जो आर्थराइटिस को प्रभावी है?
3: पर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लेके चलें, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो एक्सरसाइज है, आप चाहे कोई भी दवाई ले लें, एक्सरसाइज के बिना नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज करना और मसल्स को स्ट्रांग करना, ताकि मसल्स आपकी बॉडी का लोड लें, ना कि जॉइंट्स, ना कि कार्टिलेज, तो ये हमारा मेन एम रहता है। तो अगर आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो आमतौर पे हमने देखा है विद इन ए मंथ 50% रिलीफ आ जाता है एक्सरसाइज करने के बाद।
1: जी, आप डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के साथ आपने फिजियोथेरेपी का भी उपयोग बताया था उसमें। हाँ, तो फिजियोथेरेपी क्या रेगुलर करानी पड़ती है अगर किसी को आर्थराइटिस की समस्या हो रही है, या कुछ समय के बाद बंद भी हो सकती है?
3: नहीं, रेगुलर कराने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी का जो होता है, फिजियोथेरेपी बेसिकली टेम्पररी रिलीफ के लिए, जब दर्द बहुत ज़्यादा है और घुटने के साइड में दर्द है, मसल में दर्द हो रहा है, तो हम वेरियस तरह की, डिपेंडिंग अपॉन क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, एग्जामिन करके देखते हैं, तो हम उस तरह की फिजियोथेरेपी उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ समय के लिए। क्योंकि दर्द में अगर हम बोलेंगे कि जाओ दर्द ज़्यादा है जाके एक्सरसाइज करो, तो पेशेंट करेगा ही नहीं एक्सरसाइज, क्योंकि दर्द में मुश्किल है। तो सबसे पहले हैं दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ देना, सिकाई करना गर्म पानी से अगर मसल्स की हैं, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो वहाँ बर्फ की सिकाई एडवाइस करते हैं, एक मीडियल साइड में, या जहाँ हमने देखा अंदर की तरफ कई बार बहुत पेन होता है पेशेंट्स को, तो हम लोग बर्फ़ की सिकाई करते हैं। और एक बार जब फिजियोथेरेपी वगैरह से दर्द खत्म हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज पर डाइव करते हैं। तो बेसिकली है कि दर्द कई बार, बहुत बार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, असहनीय होता है, तो बेसिकली तब हम शॉर्ट टाइम के लिए, मे बी हफ्ते दो हफ्ते के लिए फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। पर ये लगातार लेने की जरूरत नहीं है। लगातार जो आपको करना है वो एक्सरसाइज करनी है, वो आपको एक बार तरीका सीख के घर पर ही करनी होती है।
1: अच्छा, और थोड़ा सा ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब, आपने जो बताया ठंडी सिकाई गर्म सिकाई, ये भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, कब ठंडी कब गर्म, क्या अल्टरनेट करना होता है?
3: मोटा मोटा जो हम लेके चले, जब चोट लगती है तो उसके बाद जो सिकाई करनी है, जो दर्द हो रहा है, तो आपको ठंडी सिकाई करनी होती है, एक्सेप्ट फॉर स्पाइन। स्पाइन में हमेशा गर्म करनी है, ठीक है। घुटने में, एंकल में कहीं भी चोट लगे तो आपको ठंडी से करनी है। वो भी आपको सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रहेगी वो 72 आवर्स के लिए रहेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि हफ्तों हफ्तों ठंडी सिकाई करनी है, बेसिकली फर्स्ट 72 आवर्स या बेसिकली 4-5 दिन के लिए ही करनी है आपको। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मसल्स में दर्द होता है, जो कि बिना चोट लगे होता है, उसमें जनरली हम गर्म सिकाई पर एडवाइस करते हैं। अगर किसी एक, सिर्फ एक ही पॉइंट पे दर्द है, तो कई बार हम, जैसे बोनी पॉइंट है कि वहाँ जहाँ पे है, तो कई बार हम लोग ठंडी सिकाई एडवाइस करते हैं। तो मोटा मोटा लेके चलें कि आप चोट लगे तो ठंडी, अगर अदरवाइज क्रॉनिक पेन है तो आपको गर्म सिकाई करनी।
1: जी, ये डिफरेंस भी समझना बहुत जरूरी था, और बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
4: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? जी
4: मैम, गुड इवनिंग, मनीष आजाद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच।
1: हाँ मनीष जी,
4: सवाल पूछना था, मम्मी को ऑर्थोसिस है और डॉक्टर हितेश इनको देख रहे हैं। अब जैसे कभी कभी जब से मेरी सर्जरी हुई है, मेरे को उसके बाद मेरे को भी घुटने में दर्द शुरू हो चुका है, तो क्या जेनेटिक हो सकता है कि मतलब, और या मेरे को भी कोई टेस्ट कराना चाहिए, ऐसा कोई टेस्ट जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरे को है या नहीं है?
3: टेस्ट,
1: कोई टेस्ट हो सकता है सर?
3: क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक्सरे कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। एज सच कई पेशेंट मेरे पास आते हैं बोलने की, मेरी मदर को भी था, मेरे जो ये जेनेटिक जो होती हैं, ये जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी जो ब्लड रिलेटेड आर्थराइटिस होती हैं, गाउटिया, ये जनरली कई बार जेनेटिक होती हैं, पर ऑस्टियोआर्थराइटिस प्योरली एज के साथ

0: एसोसिएटेड है, और आपको जो दर्द हो रहा है तो बेसिकली अगर स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब आपको एक्सरसाइज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपका दर्द ठीक हो जाए और ये बिल्कुल आगे ना बढ़े उससे और आपको नी रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेजेस भी आए हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता धन्यवाद दे रहे हैं कि आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं समय निकालकर, और जो जानकारी और जो जवाब आप दे रहे हैं वो उन्हें पसंद आ रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज लिखा है देवदत्त पारसोलिया जी ने, और लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, जानकारी बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ नमस्ते करके धन्यवाद दे रहे हैं हमारे श्रोता विद्यापति कुशवाहा जी कि कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आ रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। डॉक्टर साहब, एक ये प्रश्न लिखा है सुरेश जी ने, दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने लिखा है इनकी उम्र 61 इयर्स है, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है और सूजन भी रहती है घुटने में, दवा खाने से थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है, तो ये किस तरह की समस्या है?
0: अगर बुखार के साथ सूजन आ रही है तब तो इन्फेक्शन होती है। जनरली जो सूजन देखने में आती है, क्या होता है कि जब भी हड्डी रगड़ खाती है एक दूसरे के साथ तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसके जॉइंट में गिर जाते हैं, तो बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी हमेशा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, जो शरीर अपना हमेशा कोशिश करता है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसलिए वो, क्योंकि ग्रीस तो बना नहीं सकता तो इसलिए वो फ्लूइड बहुत सारा बना देता है ताकि हड्डी कम से कम रगड़ खाए। तो फ्लूइड बनने की वजह से कई बार मरीजों को काफ़ी ड्रैगिंग सेंसेशन रहता है, दर्द बढ़ जाता है, घुटना मुड़ता नहीं है पूरा, तो ऐसी सिचुएशन बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखी गई है। और बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो कई बार हमें इंजेक्शन से पानी निकालना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि दवाइयों और एक्सरसाइज से धीरे धीरे धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है।
1: जी, हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, किशन लाल जी
2: नमस्कार। जी
1: नमस्कार,
2: मेरा नाम किशन लाल है, मैं वजीराबाद से बोल रहा हूँ।
1: जी आप क्वेश्चन,
2: मेरे को ना सर्वाइकल बताया था, मेरे को वैसे अस्थमा भी है, तो अब मेरे ना पैर चलने बंद हो गए हैं, थोड़ा सा चलता हूँ एकदम आप जाता हूँ। हेलो
1: जी, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी आप क्या पूछना चाहते हैं?
0: थोड़ा सा चलते हाफ जाते हैं, आपको सांस की तकलीफ हो जाती है या दर्द बढ़ जाता है?
2: दर्द तो है नहीं जी, एक तो हाफ जाता हूँ और दूसरा चल नहीं पाता, थोड़ी दूर भी चलते ही एकदम हाफने लगता हूँ।
0: ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो कि आपको सांस फूल जाता है, तो ये तो डेफिनेटली अस्थमा से रिलेटेड है, तो इसमें तो आपको चेस्ट के डॉक्टर की,
2: मेरी उम्र है 75 साल।
0: तो बेसिकली अस्थमा है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और नेबुलाइजेशन बार बार करना पड़ेगा। छोटा सा अगर हाफना प्रॉब्लम है, जो अगर स्पॉन्डिलाइटिस या बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में चलने से दर्द बढ़ जाता है, पैर सुन भी हो सकते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपका हाफना बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं है।
2: झनकार से निकलती है पैरों में?
0: हाँ, तो ये झनकार से जो निकलती है, ये जो आप बता रहे हो चलने से अगर सुन्न हो जाते हैं पैर, दर्द हो जाती है या करंट सा आना शुरू हो जाता है और आपको बैठना पड़ता है, तो ये होती है प्रॉब्लम लंबर कनाल स्टेनोसिस में, जो बेसिकली रीढ़ की हड्डी नैरो हो जाती है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड या नसों पे प्रेशर पड़ता है। इसमें अगेन कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन क्योंकि अस्थमा है बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं दे पाएंगे हम, है ना, तो बेसिकली फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करनी चाहिए और बेसिकली MRI कराना पड़ेगा आपको स्पाइन का देखने के लिए कि कितना कैनाल डायमीटर है। मोटा मोटा जो है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करनी है आपको।
2: आपके यहाँ आ सकती हूँ?
0: हाँ, आप दिखा सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमें प्रश्न मैसेज के माध्यम से लिखकर भेजा है, लिखने वाले हैं सुनीता जैन, उन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब आपको नमस्कार, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्सिबल है अगर फोर्थ स्टेज में है? वैसे आप बता चुके हैं लेकिन फिर भी इनका प्रश्न आया है तो प्लीज जवाब दे दें। वैसे ये कह रही है कि मैं अब रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रही हूँ एंड वेट पे कंट्रोल भी किया है, तो क्या सर्जरी को डिले किया जा सकता है अगर इस तरह का रूटीन फॉलो करते रहे तो?
0: बिल्कुल, डेफिनेटली चाहे स्टेज 4 हो स्टेज 3 हो, एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एक्सरसाइज में और वेट कम करने से डेफिनेटली आपका दर्द कम हो रहा है तो हो सकता है आपको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े और ये प्रोसेस रुक जाएगा और डिले हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिवर्सिबल नहीं है, बाल जो सफ़ेद हो गए वो काले कभी नहीं होंगे, जो कार्टिलेज घिस गई है, जो गिरारी मशीन की घिस गई है, वो कभी वापस नहीं होती, या तो वो नहीं डालनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट के हिसाब से, TKR नी रिप्लेसमेंट के तरह, या फिर आपको उसके

0: आसपास की जो मांसपेशियां उनको स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे लोड मांसपेशियां लें और कार्टिलेज पे कम से कम प्रेशर जाए। ठीक है, यही मेन हमारा मकसद होता है वेट कम करने का, ताकि फोर्स अक्रॉस द जॉइंट, जो वजन है जॉइंट के थ्रू जा रहा है, वो कम से कम जाए और मांसपेशियां ज्यादा से ज्यादा उसको अब्सॉर्ब करें।
1: जी, तो अगर इस स्टेज पे भी वो एक्सरसाइज करते हैं और इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो जैसा आपने कहा उस स्टेज पर रुक जाएगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगर उससे आगे नहीं बढ़ता है तो फिर क्या दवाइयाँ भी साथ में चलती हैं?
0: मतलब स्टेज फोर में हम जनरली कुछ दवाइयाँ भी देते हैं और एक्सरसाइज भी कराते हैं। मोस्टली पेशेंट काफ़ी 50-60% ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो कि रिप्लेसमेंट तक जिनको जाना पड़ता है। तो ऐसा एक्सरे जो स्टेजेस हैं, ये एक्सरे के बेसिस के ऊपर होती हैं। हमेशा एक्सरे को देख के कभी इलाज नहीं किया जाता, मरीज को देख के इलाज किया जाता है। अगर आपको दर्द नहीं है ज़्यादा, आप रोज़मर्रा के काम कर सकते हो, तो चाहे एक्सरे में स्टेज फोर दिखा रहा है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और रणधीर गुप्ता जी हमें लिख रहे हैं ओखला संगम विहार से कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं और इस कार्यक्रम से हम बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से जुड़े रहिए। अनीता तेजवानी जी लिख रही हैं उज्जैन MP से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य घुटनों का दर्द ही होता है या उंगली और टखने में भी होता है या किसी और जोड़ में भी हो सकता है?
0: किसी भी जोड़ में हो सकता है, ये उंगलियों में पहले जनरली, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानी पॉपुलेशन में है, जो हम क्रॉस लेग ज़मीन पे बैठते हैं, स्क्वाट करते हैं, और जो हमें हमेशा नी रिप्लेस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखा गया है। बाकी ये हिप में भी बहुत कॉमन है, कूल्हे में भी होता है, एंकल में भी हो सकता है, और जब स्टेज बढ़ जाती है तो हाथों की उंगलियां भी सूज सकती हैं, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो कोई भी बॉडी अगर हम लेके चलें, स्पॉन्डिलोसिस लेके चले, स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह का ही पार्ट है, उसमें भी कुछ जॉइंट्स है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो इन्वॉल्व सारी बॉडी को कर है ये, लेकिन कॉमनेस जो हमने देखा है वो घुटने को करता है।
1: जी जी जी। और देखिए डॉक्टर साहब, आपके जो बोलने का अंदाज है वो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आ रहा है। ये हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखकर भेजा है, डॉक्टर साहब मैं आपका दीवाना हो गया हूँ और आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो चलिए, अच्छा लग रहा है कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं, जो कि डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में, बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं सर आप कार्यक्रम के लिए, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे श्रोता भी दे रहे हैं, तो आप आते रहिए इस कार्यक्रम में, भाग लेते रहिए, क्योंकि आप जैसा जो समझाते हैं वो हमारे लिसनर्स को समझ में आता है। और देखिए, थैंक यू लिखकर हमारे दूसरे भी श्रोता लिखकर भेज रहे हैं, सुनीता जैन जी ने भी थैंक यू लिखकर भेजा है कि आपने उनकी बात जो उनके बारे में बताया, उनके जो डिले करा जा सकता है ये, तो उनको भी बात समझ में आ गई है। और देखिए, ये हम एक और प्रश्न आया है और ये लिखा है दिनेश शर्मा जी ने शिमला झुंझुनू राजस्थान से, उन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 70 वर्ष है, पिछले 12 वर्ष से BP की दवा ले रहा हूं, वैसे मैं स्वस्थ हूँ, पैदल बहुत चलता हूँ, कहीं कोई दर्द नहीं है, मैं प्रिकॉशन के लिए कैल्शियम भी प्रतिदिन लेता हूँ, विटामिन डी की भी गोली प्रतिमाह लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, कृपया बताएं कि क्या मैं सही राह पर हूँ?
0: आप बिल्कुल सही राह पर हैं और आप बिल्कुल सही रहेंगे, आप बिल्कुल फिट हैं और आगे भी हमेशा फिट रहेंगे।
1: जी, बहुत अच्छी बात कि आप इसी तरह से इसी राह पर चलते रहिए, और हमारे जितने सुनने वाले हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये सही राह पर चल रहे हैं, तो इसी राह को आप सब भी पकड़ लीजिए और इसी तरह से फिर हम सब फिट रहेंगे। और यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे, और फिर हम डॉक्टर साहब से ये जरूर जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हो, ये तो सभी चाहते हैं, तो क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, क्या खानपान और लाइफस्टाइल अपनाया जा सकता है जिससे कि हो ही ना? तो चलिए इस गीत को सुनते हैं और वापस आते हैं रेडियो डॉक्टर में।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर के आखिरी चरण पर हम आ गए हैं और अब हम चाहेंगे कि कुछ बचे हुए प्रश्न जो हैं वो डॉक्टर साहब जरूर लें, पर साथ ही साथ हम प्रिकॉशंस पर जरूर बात करना चाहेंगे. डॉक्टर साहब, ये कुछ मैसेजेस हमारे पास अभी भी हैं, वो मैसेजेस मैं एक एक करके लेना चाहूंगी. हमें लिखा है नेहा जी ने जबलपुर जयपुर से कि इनकी मदर की उम्र 69 इयर्स है और उनको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइस किया गया है पर वो विलिंग नहीं है, जैसे एक प्रश्न पहले भी आया था. कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, और ये जानना चाहेंगे कि अगर नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होता है.
1: अगर मरीज कराने चाहता नी रिप्लेसमेंट तो उसको नहीं कराना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए. रिजल्ट तभी अच्छे होंगे अगर मरीज अपने मन से कराए, क्योंकि उसके बाद एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी वो घुटना, वो घुटना भी तभी चलेगा जब एक्सरसाइज आप करेंगे. ठीक है, मांसपेशियां इंपॉर्टेंट
0: है, कराने के बाद
1: एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर वो एक्सरसाइज करा सकते हैं बेसिकली, अगर नहीं चाहती हैं तो कुछ दवाइयां स्पेसिफिक होती हैं वो डॉक्टर बताएंगे आपके, वो लेना है. सप्लीमेंट्स में लीफी वेजिटेबल्स ये सब चीजें लेनी पड़ती हैं, ग्लूकोसामिन रिच फूड या ग्लूकोसामिन सप्लीमेंट्स में लेने पड़ते हैं, और क्वाड बेसिकली आप मसल्स के जो आसपास की मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है. थोड़े टाइम तक अगर दर्द ज्यादा है तो नी कैप भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए. तो ये आप कर सकते हैं. जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में बेसिकली है कि अब जिस तरह मशीन की गरारी है, स्मूथ थी जो खुरदरी होगी है उसको बदल के आपको फिर से स्मूथ करना है. तो हम कार्टिलेज बना तो नहीं सकते, नहीं तो बेसिकली तो हम एक मेटल का इम्प्लांट डालते हैं जो कि बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही इनर्ट होता है, जिसको बॉडी रिएक्ट नहीं करती और बॉडी अपने अंदर समा लेती है. तो इस तरह के इम्प्लांट हम घुटने में मेटल के इम्प्लांट, टाइटेनियम और अदर मेटल्स के इम्प्लांट डालते हैं, जिससे वो दर्द नहीं करता, आपस में रगड़ नहीं खाता और दर्द नहीं होता.
0: जी, और एक ऐसा प्रश्न और आया है, निसार अहमद जी हमें जानना चाह रहे हैं मेरठ से कि इनकी उम्र 72 इयर्स है और इनको कूल्हे में दर्द की समस्या ज़्यादा है, और ये लिख रहे हैं कि जब मैं स्टूल पर बैठकर काम करता हूँ, मेरा काम उसी तरह का है, तो 2 घंटे से ज़्यादा समय होता है तो मुझे दर्द होने लगता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस.
1: हाँ बिल्कुल, हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस कूल्हे का भी हो सकता है. इनको एवियन भी हो सकता है, वैस्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकता है कूल्हे का, अगर बैठने का काम करते हैं तो. इनको सबसे पहले तो एक्सरे कराना चाहिए, एक्सरे में बिल्कुल डायग्नोसिस क्लियर कट बन जाएगा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है या फिर एवियन है या कुछ और

0: प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली इसका इलाज किया जाएगा। अगर आर्थराइटिस है तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। कूल्हे की अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, वो आप सीखेंगे तो डेफिनेटली इसमें लाभ मिलेगा
1: जी। और डॉक्टर साहब, आप समय इतना ही है कि जो मैंने प्रॉमिस किया था, आप ज़रूर थोड़ा सा एक बार चलने से पहले बता दें कैसे बचें, प्रिकॉशंस क्या ज़रूरी हैं, और लाइफस्टाइल पे कुछ बताएं।
0: लाइफस्टाइल में ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंशन के लिए हमें लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत तो बॉडी को ट्यून अप करना पड़ेगा, मसल्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो बच्चों से लेके जब आपकी यूथ है उसी में आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, हिप की, नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग जरूर अपनी बॉडी को अराउंड, मे बी रोज़ नहीं तो एटलीस्ट 3 या 4 दिन एक हफ्ते में आप 15-20 मिनट अपनी बॉडी पे लगाएं। खान पान का ध्यान रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ग्लूकोसामीन्स होते हैं एडिक्वेट अमाउंट में, अगर पूरी उम्र खाएंगे इनको तो कभी बुढ़ापे में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बार बार बीच बीच में कैल्शियम और वाइटामिन डी भी साल भर में 3-4 महीने के लिए लेना चाहिए। तो डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है
1: जी। तो आपने बता दिया है डाइट, लाइफस्टाइल, हेल्दी एंड बैलेंस्ड फूड, ये मूल मंत्र है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचना चाहते हैं या और भी किसी बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो यही मूल मंत्र है। आज हमने बात की डीलिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमारे साथ रहे डॉक्टर दीपक जोशी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए और इतनी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
1: स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

हाँ जी, वेलकम बैक जी। FM 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है जी, और रेनबो चैनल दे उत्ते इस वेले शाम दे 4:01 हो चुके ने, ते प्रोग्राम

0: चलो दिल में बिठा के तुम्हें प्यार किया जाए और फ़ोन मिला के हमारे अगले शहर का इंतज़ार किया जाए। और इंतज़ार ख़त्म कर दिया जी, क्योंकि साढ़े अगले कॉलर दोस्त साढ़े नाल जुड़ चुके ने। जानते हैं जी उन्हां तों उन्हां दी कि थां दे उत्ते सानू उह लै के जा रहे ने। हैलो जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जनाब तुहाडा प्रोग्राम हैलो जलंधर च।
1: हेलो, नमस्कार विपन जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन जनाब, कित्थों गल कर रहे ने?
1: मैं प्रवीण बोलदा, गोपाल नगर तो जी।
0: प्रवीण जी, की हाल चाल ने?
1: हाल चाल बहुत वधिया, चाल भी वधिया, हाल भी चाल भी वधिया जी।
0: क्या बात है जी, हुण साडे हाल चाल तुसीं होर ज़्यादा वधिया कर देने। ये दस के कि कित्थे जा जाए जी घूमण नूं?
1: फिरोजपुर जाना चाहिए जी।
0: चलो जी फिरोजपुर चलते हैं जी।
1: हाँ जी, फिरोजपुर से 4 तो लैके 4:30 बजे तक परेड होंगी है जी।
0: बिल्कुल जी।
1: वो परेड देखने वाली है जी। अभी गए ही पिछे, मतलब के सवेरे गए ही तड़के 5 बजे, शामी 5 बजे आए घर।
0: जी
1: हाँ जी,
0: बहुत खूब जी। ते फिरोजपुर?
1: उधरों नाले 3 नदी पैंदी है जी,
0: हाँ जी
1: 3 नदियां पैंदी है, कट्ठे मिलदियां जी
0: जी
1: पाकिस्तान के बॉर्डर पे।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी।
1: हाँ जी, उतो नजारा बहुत वधिया, जिदा भगत सिंह ने गोलियां मारिया ही ना,
0: जी जी जी
1: उदे
0: जी जी
1: निशान हाले भी पे आ।
0: जी जी जी जी बिल्कुल जी।
1: हाँ जी,
0: उत्थे
1: बहुत
0: लेकिन
1: देखने वाली जगह जी।
0: जी जी जी जी
1: हाँ
0: गोलियां
1: जी,
0: तो नहीं जी, वैसे ही उत्थे लड़ाई हुई सी ना जी, उन्हां
1: हाँ
0: दे उत्ते सी भगत सिंह जी।
1: निशान लगे है उते। हाँ
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन भगत सिंह जी नूं गोलियां नहीं मारियां गईयां सी जी, वैसे
1: जी,
0: उत्थे जिहड़ी लड़ाई हुई सी उस दे निशान जिहड़े उत्थे ओह हैगे ने जी। और उत्थे हुसैनी वाला एक खेतर है जी, और
1: हाँ
0: उत्थे
1: जी, हाँ जी,
0: साडे शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव थापर जी की समाधि जिहड़ी है ओह उत्थे है।
1: वो
0: सो
1: सारिया ही समाधियां देख के आए जी।
0: जी जी जी जी जी और पंजाब की आज़ादी की लहर और फौजी इतिहास के नाल इन्हों का काफ़ी डूंगा जिहड़ा संबंध है। सो उत्थे जाया जा सकता जी, उत्थे नैशनल माटियास मेमोरियल हुसैनी वाला जिहड़ा उत्थे दा एक यादगार स्मारक है, वो उत्थे असी घूम सकते हैं, जिथे जाके सानू पता लगेगा कि साढ़े देश की आज़ादी दे विच किन्ना योगदान रहा है। और हुसैनी वाला बॉर्डर भी है जी, और इस तो अलावा सारागढ़ी दे।
1: बाकी
0: हाँ जी हाँ जी
1: बाकी अटारी बॉर्डर भी देखने वाला आया,
0: हाँ जी हाँ जी
1: जलियांवाला बाग भी जाना चाहिए, उसे भी देखने वाला जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। सारियां थावां जिहड़ियां ने जी बहुत यादगार ने। सारागढ़ी
1: हाँ जी,
0: मेमोरियल गुरुद्वारा भी है जी, उत्थे भी जाया जा सकता है जी। और वैसे ही हर एक खेत्र जिहड़ा जी अपने आप दे विच विलक्षण है। सो ये विलक्षणता जिहड़ी है सानू पंजाब दे विचों ही जिहड़ी है वो देखण नू मिलदी है। सो तुसीं जिक्र कीता जी, तुसीं उस थां दे उत्ते घूम के भी आए सीगे, ते बहुत वधिया लगा जाण के जी कि तुसीं मतलब कि एक अलग और काफ़ी अगर असीं गल करदे हां जलंधर तों दूरी दे उत्ते जिहड़ा स्थित ज़िला है उसका तुसीं जिक्र किया। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया
0: तो जनाब गाना किहड़ा सुनोगे?
1: जी। गाना तो आज और कल किशोर का गाना ला रहे हो
0: आज और कल
1: आप,
0: मूवी दा?
1: यहाँ आए किस लिए? हाँ
0: अच्छा जी।
1: जी,
0: ते जे मतलब कि पूछ लिया जावे कि आप यहाँ आए किस लिए, तो तुसीं की कहोगे
1: गाना सुनने के लिए, सानी गाना सुनने
0: जी?
1: वास्ते आए जी।
0: अच्छा जी, गाना सुनने लिए आए सीगे ते नाल सानू जानकारी देने लिए आए सीगे कि इस जगह दे उत्ते घूमण फिरन दे लई परिवार दे नाल जाया जा सकदा है जी।
1: हाँ जी, मैं प्रवीण बोलता, मैं कोई दोस्त गलत ना समझ ले, मैं आवाज बदली है।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी कॉल करने दे लई। सो कदी कदी अजिहा हो जांदा कि साडे जिहड़े दोस्त ने इन्ना ज़्यादा प्यार करदे ने या आवाज़ बदल के जिहड़ी है ओह उत्थे जिक्र हुंदा है अपनियां गल्लां बातां दे विच, तां ओह आवाज़ बदल के गल करदे ने, तां अजिहा जेकर ना कीता जावे ते ओह सारिआं दे लई बहुत वधिया होएगा जी। और असीं इक आपस दे विच प्यार दी जिहड़ी सांझ है ओह पा के रखीए, तां ओह चीज़ जिहड़ी है हमेशा दे लई साडे नाल बणी रहेगी। सो प्रोग्राम जिहड़ा जी है

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: हो?
1: आजादी आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा,
0: सुनो तो
1: दादा,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

मैं लगता है सबने बहुत इंजॉय किया होगा ये ट्रैक, क्योंकि बहुत ही जोश वाला माहौल उन बन चुका है। तो आप अपने नेक्स्ट सैगमेंट वाल जो सा पहला सैगमेंट है उनके वाल जाने, क्योंकि जोड़ा सैगमेंट रहेगा ना उन्हें जो

0: सो दोस्तों सेगमेंट चल रहा है फिट एंड फाइन, जिस दे विच असीं गल कर रहे हैं कि किस तरह तुसी अपनी आम रूटीन नूं वी इक खास रूटीन बना सकते हो। करना की है जी, छोटी जी तुसी टिप्स फॉलो करनियां ने अपने डेली रूटीन दे विच, या फिर थोड़ी जी अपनी लाइफ स्टाइल नूं थोड़ा जा चेंज करके जेकर तुसी नवी चीज़ां नूं अडोप्ट करो या फिर नवी इदां दी हॉबीज़ अडोप्ट करो जिस कारण थोड़ा मैंटल पीस भी बने रहे, नाल ही नाल थोड़े शरीर की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होंदी रहे, इस दे नाल थोड़ी ओवरऑल बॉडी भी वधिया परफॉर्म कर सकेगी, नाल ही नाल तुसी अपने वर्क स्पेस ते भी वधिया तरह परफॉर्म कर सकूंगी।
1: बिल्कुल, जिवें कि आपां गल कीती कि समर वेकेशनस भी चल रही ने, तो तुसीं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर शुरू कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ दे विच, अपनी डेली रूटीन दे विच, जिंदे नाल तुहाडे फिजिकल ते मेंटल दोनों हेल्थ काफ़ी अच्छे तरीके दे नाल बैलेंस हो जाण ते अच्छे तरीके दे नाल काम कर सकन। बिकॉज जदों तुसीं किसी ना किसी तरीके दे नाल एक गेम दे नाल या इनडोर या आउटडोर गेम जो तुसीं कुछ भी प्ले करदे हो, कोई भी एक्टिविटी करदे हो, तो उहदे नाल जदों तुसीं अपना मेंटल स्ट्रेस रिलीव करना शुरू करो तो उह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहिंदा है तुहाडी कारपोरेट लाइफ दे विच, तुहाडी काम वाली लाइफ दे विच, या फिर जो वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं, जो होम मेकर्स होंदे हैं, उन्हां नूं अपने घर दे काम विच एक स्टेबिलिटी लियाण दे विच।
0: बिल्कुल अरुषी, जेकर असीं गल जदों भी करदे हां ना फिटनेस टिप्स की या फिर इदां दी रूटीन अडोप्ट करन दी, तां अक्सर बड़े असीं हाई लैवल तो शुरू करदे हां कि असीं इदां दी क्लासेस ज्वाइन करेंगे या फिर कोई महंगी मील लावांगे या फिर कोई असीं कोई महंगी मेडिसिन या कोई महंगी जिहड़े आर्टिफिशियल स्टीरॉइड्स हुंदे ने उहनां दा यूज़ करके असीं अपने आप नूं फिट कर लेंगे। पर जेकर असीं बिगनर लैवल तो शुरू करिए तां साडे घर दे विच ही इदां दे रूटीनस हुंदे ने या फिर इदां दे सप्लीमेंट्स, इदां दे एक कैटलिस्ट होंगे ने जो कि साढ़े एक ओवरऑल बॉडी नू चंगी तरह बना सकते हैं। जिवें कि असीं गल करिए, असीं शुरू तो सुनते हैं कि जेकर असीं अपने शरीर दे विच पानी की चंगी मात्रा रखेंगे यानी कि चंगी तरह हाइड्रेट रखेंगे अपने शरीर नू, सानू कोई भी दिक्कत परेशानी कि खासकर गट रिलेटिड कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती। तो खासकर जदों असीं अपने मील दे नाल फाइबर लईए, जिदा कि कुकुंबर हो गए, खीरे जिसनों असीं कह दें, बीटरूट हो गए, चुकुंदर हो गए, जेकर असीं इस दा सेवन करिए हर मील दे नाल ते रफिर साढ़े शरीर दे बनती रहेगी, तो जिस के कारण साढ़े गट हैल्थ भी वधिया रहेगी, नाल ही नाल साड़ी डाइजेशन दे विच काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने नू मिलेगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुसी बाहर लिया महंगीया चीज़ा लेके ही तुसी उन्हां दे नाल अपनी डाइट शुरू कर सकते हो या फिर अपने आप नूं ठीक रख सकते हो। जरूरी नहीं हुंदा कि जिन्ना आपां ज़्यादा पैसा लगावांगे उन्नी ही वो चीज़ उनकी क्वालिटी अच्छी होएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ों तो भी जो आप बेसिक तो शुरू करते हैं ना, बहुत बेसिक चीज़ा अपने अपनों अपने घर के ही मिल जाएगियां जिंदे नाल आपां अपनी डेली लाइफ के एक प्रॉपर जो डाइट है या कुछ ऐसी चीज़ा जो आपां बेसिक आपां अपनी डाइट के इंक्लूड करिए, उन्हें अपनी इम्यूनिटी और अपनी हेल्थ काफ़ी अच्छे तरीके फायदेमंद रह सकती है और इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो सकती है।

0: सुमन दिनाल।
1: आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल ते शाम दे ठीक 6 बजे सारी शुरू हो जांदा जी प्रोग्राम लव यू जिंदगी। वो प्रोग्राम जिस दे विच मोटिवेशनल स्टोरीज दे नाल एनर्जेटिक गीत तुहाडे वास्ते प्ले करदे आं। सो अज भी कुछ इहो जिहियां गल्लां जो साडे जीवन दे उन्हां बुरे समयां दे विच सानू मजबूत रखण दे लई साडे नाल सहाई होणगियां और इंसान नूं मुड़ तों हौसला देणगियां कि वह अपने ली दे उपर दोबारा तो आ के अपनी जिंदगी नूं बिल्कुल स्मूथली तरीके दे नाल अगे वधा सके। सो आओ जी बिना किसी देरी तो चलते हैं अज के पहले ट्रैक वाल। मेहताब विरक की आवाज़ के सुनते हैं अज का पहला गीत।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: जी दोस्तों, तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स के उपर। पर हुण तो कुछ ही पहलां च, यानी कि ठीक 6:20 ते तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।
1: आकाशवाणी दा ई जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:20 होण जा रहे ने। हुण तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।
2: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
3: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
2: ते बिजली दे बिल दे
3: हुन 0 रुपए कीवें दवा।
2: ओहो, भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसदी शॉपिंग करन चलिए।
3: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: नमस्कार, ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अमृतसर च लश्करे तैयबा एलटी दे कारगुन नाल संबंधित एक घर नूं जब्त कीता है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ पदरी मीटिंग च सौनी रुत 2026 लई देश भर विच तैयारियां दा विस्तार पूर्ण जायजा लिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों पंजाब भर दी औरत सरकारी मुलाजमान लई वड्डी राहत दा ऐलान। ग्रुप सी ते डी श्रेणी दियां औरत मुलाजमान नूं घरां तों वध 40 किलोमीटर दे दायरे अंदर ही तैनात कीता जाएगा। पंजाब दे स्थानक सरकारां मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मिशन क्लीन पंजाब तहत बीती अद्धी रात अमृतसर च रात्रि सफाई मुहिम दा जायजा लिया। ते औरतां दी हॉकी विच भारत ने न्यूजीलैंड च हो रहे FIH हॉकी नेशनस कप दे सैमीफाइनल विच थां बना ली है। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अमृतसर विच इक घर नूं जब्त कर लिया है जो कथित तौर ते लश्करे तैयबा LET दे कारकुन नाल इक अंतरराष्ट्रीय नारको दहशतगर्दी नैटवर्क वर्क मामले विच जुड़िया होया है जिस दे संबंध कई देशां विच फैले हुए ने। NIA ने कहा है कि यह जायदाद मुलजम अंकुश कपूर के पिता के नाते रजिस्टर की गई सी जो कि इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, UAE और पाकिस्तान समेत होर देशों में फैले नारको दहशतगर्दी नेटवर्क का भारत में एक मुख्य कारकुन सी। एजेंसी ने दसाया है कि जांच में अंकुश से दुबई स्थित एक मुलजम नाल कथित संबंधा का खुलासा होया है जो पाबंदीशुदा दहशतगर्द तड़े LET नाल जुड़िया होया है। इसने अगे किया है कि अंकुश जिसनों पिछले साल गिरफ्तार किया गया सी नशीले पदार्था दी कथित तस्करी आवाजाई भंडार ते वंड नाल संबंधित साजिश का एक बहुत महत्वपूर्ण कारकुन पाया गया सी। इस तो इलावा वह वख-वख देशों विच मुलजमान नूं दहशतगर्दी की कमाई की लॉन्डरिंग भी करदा सी। यह भी सामने आया कि नशीले पदार्थों की तस्करी तो प्राप्त कमाई की वरतों

वेलकम बैक एफ एम 107.7 मेगाहर्ट्स से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते रेनबो चैनल ते इस वेले चल रहा प्रोग्राम लव यू जिंदगी। सो दोस्तों मोटिवेशनल स्टोरीज दे इस दौर दे विच अगे वधदे आ जी। तो अगली कहानी है पंजाब दे मोगा जिले दे पिंड टौंदा, उत्थों दा एक मुंडा भागमल पुत। घर दी हालात बहुत माड़ी सी, पिता खेतां विच मजदूरी करदे सी, भागमल स्कूल जांदा, नाल ही पिता दे नाल खेतां विच काम भी करदा। छोटी उम्र ही उसने फैसला कर लिया कि वह कुश्ती खेडेगा, पर पिंड विच ना अखाड़ा सी ना कोच। वह रोज़ सवेरे 4 बजे उठदा, खेतां दी मिट्टी विच ही कसरत करदा। लोग हसदे सी कि इस गरीब दे मुंडे ने ओलंपिक खेडना, पर भागमल ने कदे जवाब नहीं दिता, बस मेहनत करदा रहा। 2012 दे लंडन ओलंपिक विच भागमल पुत ने भारत लई कांसी दा तमगा जितया। उस दिन पूरा पिंड रो पिया। जिस मुंडे नू लोग हसदे सी कि इसने देश दा नाम रोशन कर दिता। उसने एक बार कहा सी कि मिट्टी विच खेडन वाला मुंडा जे हौसला ना हारे तां एक दिन मैट ते भी देश लई मैडल जितदा है। ये कहानी सानू सिखाउंदी है कि साधन नहीं हौसला वड्डा हुंदा है, जे साडे कोल जनून है तां रस्ते अपने आप आण बणदे ने। सो भागमल कोल अखाड़ा नहीं सी, उस कोल मिट्टी सी, उसने उसे विच्चों रास्ता कढ लिया। जे साडे कोल बहाने होणगे तां साडे कोल कामयाबी नहीं हो सकेगी। ते बहाने भी साडे कोल इदां दे हुंदे ने, जेकर कोई काम करने नूं असीं कह दईए ना कि कर लैणे आ, फिर अग्गों असीं कह दिंदे नहीं यार दिल नहीं मनदा,

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। शाम दे 7:03 हो चुके हैं। एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जिसका नाम है जी फिल्मी दुनिया। इस प्रोग्राम नू तुसी इंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रुबल दे नाल। इस प्रोग्राम नू इंजॉय करोगे 102.7 एफएम रेनबो ते। चलो जी, अज इस प्रोग्राम दे विच एक ऐसे सितारे बारे गल करांगे जिसने अपने समय दे विच तां सानू रोशनी दित्ती ही है, अपने जान तो किन्ने सालां बाद भी सानू हजे भी ओ जिहड़ी मिठी मिठी लौ जिहड़ी है ओ देई जा रहा। जी हाँ, मैं गल कर रहा बॉलीवुड की एक ऐसी आवाज़ जिसनू बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार किया, जिन्हां दा असली नाम हेमंता मुखोपाध्याय, भारतीय फिल्म जगत के महान गायक संगीतकार अते निर्माता। जी हाँ, मैं गल कर रहा हेमंत कुमार जी की। उन्हां दी गंभीर अते मिठी आवाज़ कारण उन्हां नू वॉयस ऑफ गोड का किताब भी दोस्तों ने दिता, लोगों ने दिता, अते हिंदी अते बंगाली फिल्म संगीत दे विच सब तो ज़्यादा प्रभावशाली आवाज़ जिहड़ी है ओ हेमंत कुमार जी की मन्नी जाती सी।

क्या बात है, कितनी मिठी आवाज़ हेमंत कुमार दादी। सो वैसे जदों यू नो जड़े कोलकाता तो आए होंगे उन्होंने वैसे दा दादा नाल एवं लग जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी बार इन्होंने इंटरव्यू सुने तो हेमंत दा, हेमंत दा। सो हेमंत दा दा जन्म होंगे 16 जून 1920 यानी कि अज के दिन ने, तो वाराणसी के होया, पर उन्होंने परिवार कोलकाता में आके आ बसया, जिथे उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, पर संगीत के नाल प्यार ने इन्हों इस खेत्र खिंच लिया। तो बचपन तो ही वैसे उन्होंने गायकी

क्या बात है, वंदे मातरम। हेमंत कुमार रिणाल दे हो साथियों की आवाज़ दे विच गीत इन्ना जोश भरिया कि अज भी भावें भावें जंग लग ले या फिर मार्च पास होवे या कुछ भी होवे, तुहाडे अंदर दी चंगी जिहड़ी देश भगती उह जगा सकदी है इहो जी आवाज़ हेमंत दा दी। सो हेमंत दा ने बड़े अलग अलग ढंग दे नाल गीत गाए ने एंड बड़ी अलग अलग लैंग्वेजेस दे विच भी गीत गाए ने, जिवें हिंदी, बंगाली, ईवन पंजाबी दे विच भी उन्होंने गीत गाए ने, मराठी दे विच भी गाए ने, गुजराती, असमी, उड़िया ते होर भाषावां दे विच। सो बेसिकली हुंदा की है कि जदों एक कलाकार चंगा ज़्यादा फेमस हो जाए तो उसनू अलग अलग थावां तों बड़ा ज़्यादा प्यार मिलना शुरू हो जाता है ते लोकां दे विच ना एक कनैक्टिविटी होर आ जाती है जदों वो उन्हां दी लैंग्वेज दे विच भी गा देन। जिवें मान लो हेमंत दा, जिवें मैं दस्सिया कि वाराणसी दे विच जन्मे ते बंगोल दे विच पढ़े ते बंगोल दे विच ही वो पूरी जिंदगी उन्हां दी बीती ते बॉलीवुड दे विच आ गए, यानी कि बॉम्बे दे विच आ गए, महाराष्ट्र दे विच आ गए, पर पंजाब दे लोकां दे जदों प्यार उन्हां दा जगया ते पंजाबी दे विच गीत गाया ते पंजाबी होर कनैक्टेड हो गए। पंजाबी वैसे बड़े खुश हो जाते अगर कोई होर गैर पंजाबी जुबान वाला व्यक्ति अगर पंजाबी बोल दिंदा। सो हेमंत दा दी जिंदगी दे बड़े ज़्यादा सोहने खूबसूरत जे किस्से ने, जिवें किस्सा है कि फिल्म नागिन दा एक बड़ा मशहूर गीत सीगा ते ओ बीन दे नाल मतलब बनना सीगा ते उन्होंने कहा सीगा कि नहीं एदे नाल दे नाल एक इलैक्ट्रॉनिक साज जिहड़ा है ओ वरत्या जाएगा जिहदा नाम मैं ते नहीं लै पा रहा पर शायद क्लैविलिन, हाँ CLAVIOL, यानी क्लैविलिन नाँ दा इलैक्ट्रॉनिक साज जिहड़ा बॉलीवुड विच पहली बार वरत्या गया सीगा एंड ओ एक एक्सपैरिमेंट सीगा जो कि बेहद कामयाब रहा उस वक्त भी।

जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद। रात के पूरे 9:03 हो चुके ने, FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका जिसका नाम है जी दिल चाहता है। थोड़ा दिल की चाहता है, केड़ा गाना सुनना चाहता है। एंड अगर किसी काफ़ी दिनों की ताड़ी नाराजगी चल रही है, जो कि मैं काफ़ी सारी मैसेज विचों पढ़ने की कोशिश कर पा रहा, सो नाराजगी जी अज यकीनन दूर हो जाएगी। तुसी सानू मैसेज भेज के तो वेखो। फिलहाल इदा है कि प्रोग्राम की शुरुआत जी मैं अपने किसी एक मनपसंद गीत दे नाल करन जा रहा, क्योंकि थोड़ी जी ब्रेक पानी पीनी चाहिए अपन, ठीक है। एंड तुसी आ वाला गीत जो मैं प्ले करन जा रहा ध्यान सुन लियो, तो आने वाले दिनों में चंगी फरमाइश

शिव सागर, इंदिरा बाई और छकुली ताई, और खांडवा बुलडाना से दीपाली राम धाड़े, सवराज राम, ढिलोरी अमरावती से सुनेना पवन और तनुष पवन। थैंक यू जी प्रोग्राम में मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज है, प्रोग्राम में एक हफ्ते से लगातार मैसेज करते हैं लेकिन हमारा नाम शामिल नहीं होता है जी, क्या आप नए लोगों को मैसेज शामिल नहीं करते? अरे ये क्या बोल दिया आपने। लिखा है, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु, फिल्म अनोखी अदा, गीत हाँ क्या है दिलों का न पूछो सनम। जनाब आज सभी की कंप्लेंट पूरी की जाएगी, सबके मैसेज लिए जाएंगे। ठीक है, अगला मैसेज आया है हमारे पास। ओके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी, और लिखा है, आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, कृपया हमारी प्लेलिस्ट में या फिर से कोई भी गीत जो है सदाबहार गाना जो है सुनवा दीजिए, मूवी पुकार, सॉन्ग तू मायके मत जाइयो, या फिल्म लवारिस, या फिर फिल्म जंजीर, और कसम कसम क्या होती है, या फिल्म गंगा जमुनी सरस्वती का सॉन्ग साजन मेरा उस पार है। ठीक है जी, ज़रूर कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज आया है हमारे पास, फिल्म आखिर क्यों दा सॉन्ग, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, और ये फरमाइश भेजी है पडिंग वेन पिंड वडिंग खेड़ा जिला शरीफ मुक्सर साहब। तो अगर यार मुक्सर साहब तो मैसेज कर रहे हो तो जो आप मानसा बारे गल कर रहे थे प्रोग्राम रंगला पंजाब दे विच, उदों भी मैसेज कर देंगे, तुहाडा गुआंढी शहर ही सीगा। चलो भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल, जिंदर तो मास्टर मोहन लाल शौंकी, अरविंद कुमार। ठीक है जी, थैंक यू मोहित जी, सत श्री अकाल। ते मैसेज लिखिया, सत श्री अकाल वीर, एंजॉइंग योर शो फ्रॉम 7 PM, इट्स नाइस, जसवीर सिंह दोरा आदमपुर। अरे अरे जसवीर सिंह जी की हाल चाल, प्लीज प्ले द सॉन्ग पंजाबी फिल्म साजन ठग, द सॉन्ग इज ए दुनिया मतलब दी, इत्थे कोई नहीं किसी का यार, मोहित जी प्लीज प्ले सॉन्ग फॉर मी। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया जी, सुप्रीम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, गीत तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है, फिल्म का नाम आखिरी रास्ता, 1986, आवाज़ मोहम्मद अजीज़, एस जानकी, गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्डा अलगा मिड्डा। ठीक है जी, अगला मैसेज आया, नमस्कार हार्दिक अभिनंदन, रेनबो जलंधर के लिए बेशुमार मोहब्बतें दुआएं, गीत आया आया अटरिया पे कोई, स्वर लता मंगेशकर, फिल्म मेरा गांव मेरा देश, चंडीगढ़, सतीश नेजा, विमला नेजा। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगला मैसेज, मैसेज काफ़ी रीड कर लिए हैं, गाना कोई लगा ही देते हैं, ये गाना लगेगा, दिल चाहता है, सत श्री अकाल, गाँव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, फिल्म हीरा, स्वर रफ़ी, लता मंगेशकर, गीत मैं तुझसे मिलने आई। ठीक है जी, सो हीरा जो है वो ढूंढ लेते हैं, मैं तुझसे मिलने आई लता मंगेशकर जी का, ये रहा आप सबकी रेडियो सेट पे। बाकी आप भी चाहते हैं प्रोग्राम में शामिल होना, आप भी चाहते हैं आपकी फरमाइश का पूरी होना, अरे बहुत ही सिंपल काम, उठाइए अपना फ़ोन, व्हाट्सएप खोलिए और डायल कर दीजिए हमारा नंबर 9855101027, ऊका माइसर बजना है व्हाट्सएप पर ही, और अपन लिख देना है कौन सा गाना सुनना चाहिए, कौन सा फिल्म से।

जी दिल पे जख्म खाते हैं वैसे ना, जख्म जख्म कोई नहीं खाना, तुसी बस टाइम ते 9:08 हो चुके ने, अपनी रोटी जड़ी खा चुकी हो तो ठीक है, नहीं खाधी तो खा लो, जख्म जुखम नहीं अपना खाते, ठीक है जी। सो वो मैं कहना जनाब इन्ने मैसेज आ गए, लो जी बई गिनती काउंटिंग जड़ी है शुरू कर लगे आप मैसेज तो, ठीक है जी। नमस्ते जी, रजिंदर पाल राणा, संजू राणा, श्रुति राणा, पिंड बुलारा, लुधियाना तो, क्या बात है जी, ये नवे दोस्त लगते हैं जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगला मैसेज आया जी, नमस्कार जी, फिल्म हाथ की सफाई, गायक मैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर बोल, वादा कर ले साचना तेरा, शिवाजी नगर वडाली देशमुख से, राजेश खोबरखेड़े।

जी एंजॉय करे प्रोग्राम, दिल चाहता है समा हो चुके 9:15 ते अज बहुत प्रेशर जा आ रहा है डे मैसेजेस। ओके अगला मैसेज जो सानू पहुंचे है लिखिया, दिल चाहता है सौप्रेम नमस्कार, आप कैसे हैं, मूवी जंगली और नैन तुम्हारे मज़ेदार। और ये मैसेज भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। लिखा है माई रेडियो माई लाइफ। अगला मैसेज आया फिल्म हीरा पन्ना, गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। अगला मैसेज जी आर पॉल थे पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो, फिल्म दो बदन दा गीत रहा गर्दिशों में हरदम, रहा गर्दिशों में हरदम। अगर वही हुआ तो भाई वो तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गाना तो मेरा भी फेवरेट है, रहा गर्दिशों में। ठीक है मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना हम ज़रूर प्ले करेंगे। थोड़े से मैसेज और पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दिल चाहता है मोहब्बत जिंदाबाद, आरजे होस्ट सौप्रेम नमस्कार। और ये मैसेज हमें भेजा है चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो जी, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर, गुरमन सिंह जोसन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो, आदर्श सिंह जोसन वैंकूवर कनेडा तो, रोबिन सिंह जोसन। ठीक है थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आदरणीय प्रसारक जी, खुश रहो आबाद रहो, फिल्म शक्ति। और ये मैसेज भेजा है नारकली बजाओ जगराऊं पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी, खुश रहो मस्त रहो जी। थैंक यू जी तुसी भी जी। अगला मैसेज पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। और आगे मैसेज आया है लिखा है एनी सॉन्ग पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक, मधु नायक। आगे एक और मैसेज आया है प्रोग्राम दिल चाहता है प्रसारक मोहित त्रिबल जी को प्यार भरी नमस्कार, मूवी मजबूर गीत आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, गांव नथाणा पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता और एनी सॉन्ग। ठीक है जी अगला मैसेज आया है नमस्कार सर जी, आज आप हमारी पसंद का गीत सुनवाएं जी, फिल्म आप तो ऐसे ना थे, गीत तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, गायक मोहम्मद रफ़ी, फरमाइश करता गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युद्धव कड़वासरा। ठीक है जी फिलहाल मैं सुनने जा रहा हूँ आप सभी के साथ फिल्म दो बदन का ये गीत रहा गर्दिशों में हरदम।

जी इंजॉय करे प्रोग्राम दिल चाहता है और समा हो चुका है 21:21 है ना जेडे कि इस तरह के टाइम नू देखना जानते हैं उन्होंने पता है कि 21:21 हो चुके हैं यानी कि रात के 9:21 हो चुके हैं। अगे वधदे हैं अगे मैसेज है राम राम जी फिल्म सरगम गीत डफली वाले डफली पचा जलालाबाद वैस से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आगे मैसेज आया है सब प्रेम नमस्ते किसी भी गीत में शामिल करें नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा डॉक्टर मदन लाल वर्मा। आगे मैसेज आया हमें और लिखा है इतनी बार मैसेज भेज चुके हैं अरे दोस्त क्या बताऊं। लिखा है प्रेमपुर में नमस्कार ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव डॉक्टर प्रशांत राजे यादव कुमार सचिन त्वायाल कुमार प्रथमेश देशमुख कुमार सर्व देशमुख कुमारी प्रणाली कुमारी सानवी कुमारी कल्पना समस्त राजे यादव देशमुख वायाल परिवार और थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया सब प्रेम नमस्कार फिल्म कहो ना प्यार है बोल चांद सितारे फूल खुशबू ये सब पुराने हैं पसंद करते धतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा। ये गाना हम जरूर चलाएंगे बहुत अरसों के बाद ऐसे गीत की फरमाइश आई है कहो ना प्यार है प्यार की कश्ती में ये गाना कहो ना प्यार है ठीक है। अगला मैसेज आया है नमस्कार वडिंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती रोड़ा किसी भी गीत शामिल करो धन्यवाद। अगला मैसेज आया है जी प्रोग्राम दिल चाहता है पेश करता है आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार आपकी अभिनंदन बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होती है आपका हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। फिल्म का नाम छा है गायक तलत महबूद लता गीत के बोल इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक दिन एक बादल आवर अरे ये गाना मेरा फेवरेट है ये गाना भी सुनेंगे। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी खेमलता हीना और हर्षित खुशी गोस्वामी ठीक है ऐसा है। यहाँ पर हम इस मैसेज को छोड़ के अगले मैसेज पर जाते हैं। ओके अबोहर से राम सहाय शास्त्री फिल्म सरगम डफली वाले डफली पूजा अगला मैसेज कार्यक्रम तो हड्डी फरमाइश किसी भी पंजाबी रोमांटिक गीत में हमारे नामों को शामिल कीजिए भेजने वाले हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से ते विनोद खड़ से क्या बात है। करणवीर हाउस पुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब तो नमस्कार जी प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजोत किसी भी गीत में शामिल किया जाए धन्यवाद। फिलहाल मैं प्ले करने जा रहा हूँ गाना कहो ना प्यार है एंड इस तो बाद जो दूसरी गाने फरमाइश है मैं वही प्ले करांगा।

Dude, thank you so much. I know, you love me and I also love you. Okay. So, अगे मैसेज है, लिखा है, दिल चाहता है फिल्म भीगी पल के जन्म टू, जन्म जन्म का साथ है, प्यार भरे नमस्कार, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, अमरान, इफरान और शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आगे मैसेज पहुंचे हमारे पास, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, प्रसारक जी आप हमें किसी भी फरमाइशी गीत में शामिल करिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज हाँ, आज़ाद नगर, लक्ष्य हरिद्वार से। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। अगला मैं सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मुनि काका, बिट्टू लाडी, मास्टर मोहन, जानक नागर, जलंधर तो फिल्म प्यासा सावन की तो मेरी चमक चलो, ठीक है जी, थैंक यू। दिल चाहता है शो एनी सॉन्ग टू रीड आउट माय नेम प्लीज आर जी काश फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई नेम इज सत्येंद्र दास फ्रॉम स्टेट आसाम, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया जी, कस्बा बुरेड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशबद सिंह राहुल, और स्वागत है आप जी का भाई साहब दिल चाहता है कार्यक्रम में, अरे शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ते अगे मैसेज है, सत श्रीकाल, दिल चाहता है विच मोहित रूबल जी, बरविंदर सरा, गुंतास, रसनदीप, अनिंदर सरा, पेंड मोरजन, सिखा, हनुमानगढ़, फिल्म तेरे नाम की दिबोल, तुमसे मिलना बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आई नो ये मुझसे कहा जा रहा है पर इट्स ओके। प्रोग्राम दिल जाता है पंडित कल्याण मलका, जिला बठिंडा तो, अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर, मनिंदर, फरमाइश सॉन्ग, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, रिलीज ईयर ये एंड ऑल, थैंक यू सो मच जी। अगला मैसेज आया जी, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड होस्ट, जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, सॉन्ग वो तेरे प्यार का गम। ओके जी, ठीक है जी, दोस्त मैसेज बहुत भेजी जा रहे ने चलो फिलहाल जरा गीत मैं क्या सीखा कि छाया मूवी का गीत जरा मैं सुनागा, इतना तुम मुझसे प्यार बढ़ो।

मैं कब तक साथ चलूं भाई? 11 बजे तक आपको मेरा साथ चलना पड़ेगा, 11 बजे तक। ओके जी, इंजॉय करें प्रोग्राम, दिल चाहता है ते अगे वधदे हां। अगे सानू दोस्त जिहड़े मैसेज भेज चुके ने, उन्हां दा नाम है जी, लिखिया है, दिल चाहता है, पिंड मूलियां वाली, जिला फाजिलका, प्यार भरी नमस्कार, विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, हनी, दीक्षा, जन्नत, फिल्म मामला गड़बड़ है तो कोई भी सुना दो। ठीक है जी, पंजाबी फिल्म मामला गड़बड़ है जद कुड़ी बेचारी, आही वाला गीत नहीं। ओके चलो, लेट्स सी ये कहाँ पर है। फिल्म मामला नहीं मिलया, दिल का मामला मिल गया। आ लगा दिए, फिल्म दिल का मामला है। ठीक है, आ एंजॉय कर ले यार। ठीक है, अगे बढ़ते हैं। दिल चाहता है, गांव फ्रांस, जिला हिसार से, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, कोई भी गीत। नमस्कार जी, फिल्म एक नज़र, गीत पत्ता पत्ता बूटा बूटा, मजनू कटेला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। अगला मैसेज, फिल्म दिल चले जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, गायक कलाकार कुमार शानू, और ये मैसेज भेजा है हमें फूल चिचोली तालुका पंडरपुर, फरमाइश करताओं के नाम है जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बहानू भी, बादशाह और पूरा मुलानी परिवार। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया है कुम्हार हेड़ा गांव से, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और अक्सा, नजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम, अदिब, एनी सॉन्ग लिख रहे हैं। आदाब, बिल्कुल जी आदाब आपको भी। खुशनुमा नमस्ते, गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली से, थैंक यू जी। गाने के बोल प्यार मेरा प्यार वो है फिल्म ये रात फिर ना आएगी, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका, आंचल कुंज, परवीन, रजत, राजेश, और लिखा सर जी प्यार भर नमस्कार, कैसे हो, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है और प्रोग्राम पेश करने का स्टाइल बहुत ही मस्त है, थैंक यू। अगला मैसेज आया है गांव घमंडिया सूरतगढ़, जगदीश ढोकिया, परमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन, तमन्ना, साइना, विष्णु, दोहती, ईवा, धरनिया, फिल्म गबन, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, बोल मेरे दिल पे एहसान तुम्हारा है। दोस्तों फिलहाल मैं प्ले करने जा रहे हैं फ्रॉम द मूवी दिल दा मामला है, उदास मान जी दा गीत।

जी इंजॉय करे प्रोग्राम दिल चाहता है एंड बहुत सारे दोस्त सारे मैसेज मैं रीड कर चुके हैं ते जड़ी वारी हजे भी जा रही है। अगला मैसेज है मोहित साहब जी, सत श्री अकाल वीपीओ कोटली थां सिंह जलंधर मिंटू चंदेल जी पसंद तुहाडी गीत हमारा ठीक है जी, थैंक यू सो मच मिंटू भाजी। तो अगे वधते हैं, अगे लिखिया मैसेज नमस्ते फ्रॉम सुमन हीर कामिया तनम हरविंदर युवरा यशिका फ्रॉम पंजाब दसूआ डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर सोंग लेके पहला पहला प्यार। क्या बात है, खूबसूरत गीत की फरमाइश की है। थैंक यू सो मच तमाम दोस्तों, अगर प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो तो थैंक यू सो मच। अगला मैसेज जी, थैंक यू मोह जी गीत लगाने के लिए, मैं तो पता नहीं मैं कहना था लगाया कहना था नहीं लगाया, पर किसे ज़्यादा भी लगाया खुश रहो यार सब दा लगाया। आदरणीय प्रसारक महोदय जी नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल कीजिए गांव खोखरा वाली श्रीनगर विनोद बरासा विशाल बरासा विकास बरासा रोशनी बरासा और शगुन बरासा। ठीक है जी, अगला मैसेज है फिल्म आह बोल जाने ना नज़र पहचाने जिगर उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी भानु प्रकाश। ठीक है जी, अगला मैसेज आरजे जी आपको हमारा नमस्कार, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू कोई भी की सुना दीजिए। अगला मैसेज है जी महबूब की मेहंदी, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी भोपाल के राजस्थान से दरपिंदर छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिंपा पूजा परिवार मैसेज जरूर शामिल करें। अरे मैसेज तो मैं शामिल कर देता हूँ। अगला मैसेज फिल्म सी आई डी सॉन्ग है दिल है मुश्किल जीना जहाँ। ओके जी, लेट्स सी इफ दिस सॉन्ग इज इजीली अवेलेबल और नॉट। ओके सी आई डी हमें तो नहीं मिली सी आई डी में गैप ऊप ना डाला हो। ओके C.I हाँ मिल गया, हाँ इंटेलिजेंट मैसेज भेजा है जी संदीप मक्कड़ मनोहर लाल गांधी धर्मवीर जी दिल्ली वाले कमल साणी जोगिंदर पाल मक्कड़ संजय हैदराबादी पिंगा वाला चौंक कराया जलंधर तो लिख रहे ने मैसेज CID सॉन्ग का ए दिल है मुश्किल जीना। ठीक है जी, ये रहा ये गाना कितने गया, ये है बॉम्बे मेरी जान भाई, इतने तो गाने होर है कि ने ते ठीक है भाई, जो मैं अभी लगाऊंगा फिर आपको वही मंजूर करना पड़ेगा। और ये मैं लगाने लगा हूँ, ये है बॉम्बे मेरी जान, नहीं कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, ये लगेगा गाना ठीक है, क्योंकि ऐसा ही किया है मैंने गाना कोई बोला है मैं ढूंढ कोई पा रहा हूँ तो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना हो गया। इंजॉय करो इस गीत नू और गीत तो बाद जो हो दोस्तों मैसेज नहीं हो मैं लवाँगा, क्योंकि नाराज़ मैं किसी नहीं करता।

भाई हमने थामा हुआ है तमाम दोस्तों का हाथ और साथ, और हम कहीं नहीं जाने देंगे। अगला मैसेज, प्लीज प्ले सॉन्ग ऑफ ताल मूवी। अरे वाह, बहुत सोना फिल्म भी, बड़ी सोनी है, ताल और सारे गाने बड़े खूबसूरत हैं इस फिल्म दे। फरमाइश आई है जी, ताल मूवी दे गाने दी भेजिए। इंद्रवीर अरोड़ा, चेतना प्रेम कुमारी, अपेक्षा, इनायत केशव फ्रॉम सुल्तानपुर लोधी। की हाल चाल सुल्तानपुर लोधी वाले हो। अगला मैसेज आया जी, सुखवीर सिंह, कमलप्रीत कौर, रोशन प्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर, एनी सॉन्ग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है, दिल चाहता है, आरजे मोहित रुबल सर जी, प्यार भरी नमस्कार, एनी सॉन्ग। ओके जी, किरण अरुला, ग्रीन पार्क कपूतला, थैंक यू। और एनी सॉन्ग के बाद फिर भी इन्होंने एक फरमाइश भेज दी है। ओके, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला, जिंदगी के मालिक तूने ये क्या खेल दिया, गीत फिल्म रुतन गिली आई का है। देखो जी, फिलहाल मैं ताल मूवी का गीत जो है वो प्ले करने जा रहा हूँ। समा बचेगा तो हम आपकी फरमाइश भी ज़रूर प्ले करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं तमाम उन सभी दोस्तों के मैसेज रीड कर चुका हूँ जिन्होंने हमें 8:44 से शुरू किए थे मैसेज, और अब तक लास्ट मैसेज जो 9:47 पे आया है, मैं सभी प्रोग्राम में ले चुका हूँ। तो ओके जी, आज ये सुनते हैं, इसके बिना क्या जीना यारो। ठीक है, ओके।

कि खुश जमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। 22 से रशक महरो मात थे जो, उन हिलालों की याद आती है। जिनकी आंखों में था सरूरे गजल, उन गजलों की याद आती है। सादगी लाजवाब है जिनकी, उन सवालों की याद आती है। रात दे 10:08 हो चुके हैं। FM रेनबो से तुसी एंजॉय कर रहे प्रोग्राम शामे गजल।

कि जब वो मसरूर नजर आता है, जब वो मसरूर नजर आता है, हर तरफ नूर नजर आता है। मैं तो मैं ख्वार हूं तू क्यों साकी, मैं तो मैं ख्वार हूं तू क्यों साकी, नशे में चूर नजर आता है। कुर्ब से हाथ उठाया मैंने, कुर्ब से हाथ उठाया मैंने, तू बड़ी दूर नजर आता है। मैं ही तन्हा नहीं दिल के हाथों, मैं ही तन्हा नहीं दिल के हाथों, तू भी मजबूर नजर आता है। खाक सारी को छुपाने के लिए वज्द मगरूर नजर आता है। ये जो शायरी मैंने पढ़ने की कोशिश की है, ये लिखी है सिकंदर अली वत्स साहब ने।

मेरी यादें भला तुम किस तरह दिल से मिटाओगे, मेरी यादें भला तुम किस तरह दिल से मिटाओगे, भुला कर तो जरा देखो मुझे कैसे भुलाओगे। मोहब्बत करने वाले दर्द में तन्हा नहीं होते, जो रूठोगे कभी मुझसे तो अपना दिल दुखाओगे। करोगे याद तुम गुजरे जमाने की सभी बातें, कभी इतरा के हंस दोगे कभी आंसू बहाओगे। गुजर जाते हैं जो लम्हे कभी वापस नहीं आते, तो बीते पल मोहब्बत के कहां से लेके आओगे। जुदा अपनों से ही कर कर टूट जाता है कोई कैसे, जो बिछड़ोगे कभी मुझसे तो खुद ही जान जाओगे। बढ़ा लोगे अगर तुम फासले मुझसे कभी आजिम, बढ़ा लोगे अगर तुम फासले मुझसे कभी आजिम, तो रूदाद दिल नाशाद फिर किसको सुनाओगे। ये खूबसूरत गजल लिखी है आसिम कोहली जी ने, जिनको पढ़ने की मैंने गुस्ताखी की है। अभी प्रोग्राम शाम गजल में अगली गजल बहुत खूबसूरत, वो जो तुम में मुझ में करार था।

जी दोस्तों, इंजॉय करें प्रोग्राम। एक प्यार का नगमा है एंड बड़ा खूबसूरत नगमा तुसी हुण सुणे मोहम्मद रफी जी दी आवाज़ दे विच जाने बहार। हुण सुबह तुसी सुणोगे बड़ा ही खूबसूरत एक होर गीत पर लता मंगेशकर जी दी आवाज़ दे विच FM रेनबो दे उपर।

इसे सुनजॉय करे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, लता मंगेशकर जी के खूबसूरत गीत बाद हूँ अगे इंजॉय करते हैं हेमंत दादा एक खूबसूरत नगमा।

अब बैंड 102 सरसठ में कहा से तुसी इंजॉय करे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। इस वजे रात दे बज चुके ने 10 बज के पूरे 51 मिनट ते हुण सुनदे हां किशोर दा दी आवाज़ दे विच बड़ा ही खूबसूरत गीत है।

ये तो सो एंजॉय कर सी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, ये बड़ा ही खूबसूरत गीत प्यार मांगा है तुम इसे तुसी हुण एंजॉय किया किशोर दा दी आवाज़ दे विच। फिलहाल रात के 10:56 ते पूरे 30 सैकेंड जिहड़े ने हो चुके ने, आओ हुण एंजॉय करदे इस प्रोग्राम का आखिरी गीत जिसनू आवाज़ दिती है आशा भोंसले जी ने, ते गीत बोलने धीरे धीरे मोहब्बत में।